विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों

चीनी मिलों को फिर चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को भी मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रूपये से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई है। वहीं शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1 अरब 50 करोड़ 96 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स

कितना सुंदर संदेश है कि सच्ची श्रद्धा, प्रेम और सेवा, ये सब ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। शास्त्रों में भी कहा गया है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब हम निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य निभाते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारे जीवन को और उसके मार्ग को प्रशस्त करते हैं।

जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है, सच्चे अर्थों में जीवन की परीक्षा में वही सफल होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योग कर्म सुकौशलम, यानी अपने कर्म को कुशलता और समर्पण से करना ही योग है। एक बार एक संत ने किसी से पूछा, भगवान कहाँ मिलते हैं? संत ने मुस्कुराकर कहा, जहां प्रेम है, सेवा है, करुणा है, अहंकार नहीं है, वहीं भगवान का निवास है। इसलिए यदि हम अपने जीवन में प्रेम, क्षमा और सेवा का भाव अपनाएं, तो ईश्वर हमारे जीवन में स्वयं ही उपस्थित रहेंगे।

आइए मिलकर प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेति। समस्त संसार में सुख, शांति, स्वास्थ्य और सद्भाव का प्रकाश फैलाएं।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर 6:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं चिंतन कार्यक्रम में भगवान महावीर के उपदेश।
1: नमस्कार, आज के चिंतन कार्यक्रम में आइए सुनते हैं लघु वार्ता भगवान महावीर के उपदेश। वार्ताकार हैं शंभुनाथ पांडे।
2: भारतवर्ष की तपोभूमि पर ज्ञान का अमृत बांटने वाले भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पूर्व वैशाली गणराज्य के क्षत्रिय कुंड में एक क्षत्रिय

0: आत्मा ही उसकी शत्रु होती है। आपका असली शत्रु आपके भीतर ही है, जो कि क्रोध, घमंड, लालच, आसक्ति और नफरत हैं। प्रत्येक जीवित व्यक्ति के प्रति दया भाव रखो, क्योंकि नफरत और घृणा करने से स्वयं का विनाश होता है। जैसे आग को ईंधन से नहीं बुझाया जा सकता, बिल्कुल उसी प्रकार जीवित व्यक्ति तीनों लोकों की सारी धन दौलत पाकर भी संतुष्ट नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर हमने कभी किसी के लिए अच्छा काम किया है तो उसे भूल जाएं, और अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो उसे भी भूल जाना चाहिए। खुद से लड़ो, बाहर के शत्रुओं से क्या लड़ना। जो व्यक्ति खुद से लड़ना सीख जाए, उसे जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अपने आप को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता है। महावीर ने मानव जीवन के सकारात्मक दृष्टिकोण के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कर्म को ही भाग्य माना। उन्होंने कहा कि शिक्षाएं आत्मा की आंतरिक सुंदरता और सद्भाव को दर्शाती हैं। महावीर का अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का संदेश सार्वभौमिक करुणा से परिपूर्ण है। महावीर ने कहा कि जीवित शरीर केवल अंगों और मांस का एकीकरण नहीं है, बल्कि यह आत्मा का निवास है, जिसमें संभावित रूप से पूर्ण बोध यानी अनंत दर्शन, पूर्ण ज्ञान यानी अनंत ज्ञान, पूर्ण शक्ति यानी अनंत वीर्य और पूर्ण आनंद यानी अनंत सुख है। महावीर का संदेश जीवित प्राणी की स्वतंत्रता और आध्यात्मिक आनंद को दर्शाता है।
1: अभी आप सुन रहे

संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और अपराधियों की संपत्ति जब्त किए जाने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर

0: से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने में मदद करता है। कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री नायडू ने बताया कि सतत विमानन ईंधन नीति का मसौदा अपने अंतिम चरण में है और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी का पवित्र जल लेने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री जैसे तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। The Lok Sabha has passed the anti-paper leak bill, proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for

संगीती का कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नजरुल गीत। कलाकारा थी बागेश्री सरकार। इसके साथ ही संगीती का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर 7:30 हुए हैं। ये वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरे गुड मॉर्निंग का। आज के इस गीतों भरे गुड मॉर्निंग में बहुत ही खूबसूरत गीतों की एक लड़ी लेकर मैं हूं आपका दोस्त चिरपरिचित मित्र नवीन सक्सेना। नमस्कार, स्वीकार कीजिए। दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर एक दूसरे का हाल पूछना भूल जाते हैं, लेकिन कभी कभी सिर्फ एक छोटा सा सवाल, कैसे हैं आप, बस यही बहुत बड़ा सुकून देता है। एक अपनापन, एक प्यार और एक खूबसूरत सा एहसास देता है कि दिन में कोई तो ऐसा है पूछने वाला जो जानते हैं क्या कहता है, वो ये कहता है।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: कभी कभी किसी की तारीफ करना और वो भी सीधी सच्ची तारीफ करना सीधा दिल में उतर जाती है। और कभी किसी को ये कह देना, देखो ना जो तुमको पसंद है ना वही चीजें मुझे भी पसंद है। तुम्हारे साथ बैठ के चाय पीना, तुम्हारे साथ बैठ के कॉफी पीना, और वो जो चाय मुझे नहीं पसंद तुम्हें पसंद है ना तो मुझे भी पसंद है। एक बार कह के देखिए, फिर देखिए क्या मजा आता है।

8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

ज़िंदगी अगर मुस्कुराते हुए जी जाए तो हर सफ़र आसान हो जाता है। तो चलते चलते बहुत ही खूबसूरत गीत जो प्रेम और उम्मीद से भरा हुआ है उसके साथ छोड़े जाता है आपको। इस गीतों भरे गुड मॉर्निंग में आपका ये दोस्त नवीन सक्सेना। एंजॉय कीजिए और अपने दिन को

0: जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने और त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
1: इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने यह विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग

0: से जया भारती।
1: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलापुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान आज सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। गुजरात में मंजलापुर विधानसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सतीश पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने भीखा भाई रवारी को खड़ा किया है। मध्य प्रदेश में दतिया सीट राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित होने के कारण रिक्त हुई है। वहीं बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने और ये सीट छोड़ने के बाद कराया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: बांकीपुर विधानसभा

गोयल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगातार वैश्विक चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस बाजारों में अस्थिरता, साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास की अनिश्चितता और लाल सागर संकट शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत भारत का पहला दूरसंचार

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर 3:47 स्पर्धा में दिलीप महादू गावित को स्वर्ण पदक और मोहम्मद बैसिल मोर सिंह नाकाटी को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरलम और माहे, कोंकण और गोवा, कर्नाटक, पंजाब, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर संसद में पारित और प्रस्तुत विधेयकों की चर्चा सुर्खियों में है। अमर उजाला ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है, परीक्षा में गड़बड़ी पर 10 साल तक जेल, विधेयक लोकसभा में पास। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, लोकसभा राज्यसभा में एक एक बिल पास, जन्म मृत्यु पंजीकरण में संशोधन बिल पेश। लोकसत्ता ने लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर शीर्षक दिया है, गृहमंत्री पर राहुल की टिप्पणी से लोकसभा में जमकर हंगामा। दैनिक ट्रिब्यून ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के चित्र सहित उनकी उपलब्धियों को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है, जबकि पंजाब केसरी ने शेयर बाजार में आई तेजी को मुख्य पृष्ठ पर दिया है। राजस्थान पत्रिका ने सड़क सुरक्षा को लेकर संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित किया।

0: रहे। शीर्षक है, सिर्फ तेज रफ्तार नहीं हमें सुरक्षित सड़कें भी चाहिए। लेख में कहा गया है कि आधुनिक राष्ट्र की असली परीक्षा ये नहीं कि उसकी सड़कें लोगों को कितनी तेजी से गंतव्य तक पहुंचाती हैं, परीक्षा ये है कि क्या उन सड़कों पर निकलने वाला हर व्यक्ति जीवित अपने घर लौट सकता है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। एक बार फिर, लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा है इतिहास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

बिहार के बांकीपुर हलके, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया हलके में पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। बिहार में बीजेपी सदर नितिन नबीन के राज्यसभा के लिए मुंतखब होने के बाद उनकी बांकीपुर सीट खाली होने के सबब वहां ज़िमनी चुनाव ज़रूरी हो गया था। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि राय दहिंदगान वोट डालने के लिए सुबह सवेरे से ही पोलिंग मराकज़ पहुँच रहे हैं। पटना के बांकीपुर असेंबली हलके की

कॉमर्स और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि बुहरा अहमर के बहरान और आलमी उथल पुथल के बावजूद भारत की अशिया की बरामदात में मौजूदा माली साल की अप्रैल से जुलाई की मुद्दत के दौरान 15% का इजाफा इंदराज हुआ है। जीआरडी टाटा मेमोरियल लेक्चर 2026 से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि आलमी कशीदगी और तिजारती रास्तों में रुकावटों के बावजूद भारत की अशिया की बरामदात लचकदार रहीं। जनाब गोयल ने मजीद कहा कि ये कारकर्दगी ऐसे वक्त में मुल्क की मजबूत इक्तसादी बुनियादों की अक्कासी करती है जब मगरबी एशिया के बहरान और जहाज़रानी की अहम राहदारियों में रुकावट की वजह से दुनिया भर में कारोबार गैर यकीनी हालात के शिकार हैं। कॉमर्स और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बरामदात को फ़रोग देने वाली कौंसिलों और सनअती अंजुमनों के साथ मीटिंग की, जिसका मकसद भारत के बरामदाती इको निज़ाम को मुस्तक

0: है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: शुमाली केरलम में कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत इन तीनों जिलों के दूरदराज इलाकों में बहुत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। वायनाड जिले में आज तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान किया गया है, जबकि 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां बहुत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। कल आधी रात से तकरीबन सभी जिलों में 5 मिलीमीटर से लेकर 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तवक्को है कि जुमे और हफ्ते को केरलम में बारिश की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। स्मिथी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
0: इस दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने आज वस्ती महाराष्ट्र और मगरबी मध्य प्रदेश में कुछ मकामात पर शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। शुमाल मशरकी भारत, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी राजस्थान, गुजरात खित्ता, हिमाचल प्रदेश, केरला और माहे, कोंकण और गोवा, साहिली कर्नाटक, मराठवाड़ा, पंजाब, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ के कई हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। कांवड़ यात्रा आज हरिद्वार उत्तराखंड में शुरू हो गई है। रियासती सरकार ने लाखों शिव भक्तों की हस्ब मामूल आमदरफ्त, उनकी आसानी और तहफ्फुज के लिए जबरदस्त इंतजाम किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: कांवड़ यात्रा के लिए हिफाजत के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। ये यात्रा 11 अगस्त तक जारी रहेगी। नीम फौजी दस्तों के साथ रियासती पुलिस के अमले को कांवड़ियों के आने जाने के रास्ते कौमी शाहराओं, बड़े घाटों, मंदिरों और दीगर हसास मुकामात पर तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरों, CCTV नेटवर्क्स और जदीद मरबूत कंट्रोल रूम के जरिए 24 घंटे निगरानी की जाएगी। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देवभूमि की यात्रा करने वाले लाखों अकीदतमंदों के लिए हर मुमकिन इकदाम किए गए हैं, ताकि उन्हें यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न उठाना पड़े। यात्रा के दौरान ट्रैफिक की नकलो हमल को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक की आमोदरफ्त का खसूसी मंसूबा नाफिज किया गया है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए आफात से निपटने वाली इकाइयों को भी हाई अलर्ट पर रखा जाएगा। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।

0: किलोमीटर दौड़ में पैरा एथलीट दिलीप गावित ने सोने का तमगा जीता है, जबकि मोहम्मद बासिल ने चांदी का तमगा अपने नाम किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं संतूर पर बजाया राग तोड़ी। कलाकार हैं मनोज कुमार शर्मा। आपके साथ संगत कर रहे हैं तबले पर रंजीव कुमार बिस्वास। तो आइए सुनते हैं मनोज कुमार शर्मा से संतूर पर बजाया राग तोड़ी।

अभी आप सुन रहे थे संतूर पर बजाया राग तोड़ी। कलाकार थे मनोज कुमार शर्मा। तबले पर आपके साथ संगत कर रहे थे रंजीत कुमार विश्वास।

0: मोड़ रखे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उद्योग पत्रिका।
1: उद्योग पत्रिका।
2: साथियों नमस्कार। कहा जाता है कि प्रबंधन किसी भी व्यवस्था या संस्था को संचालित करने की एक सफलता की कुंजी है। प्रबंधन किसी भी संस्था, संगठन या कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने की कला और विज्ञान है। ये केवल संसाधनों का उपयोग करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उपलब्ध मानव, वित्तीय और भौतिक संसाधनों के सर्वोत्तम समन्वय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया भी है। आज के प्रतिस्पर्धी और तेजी से बदलते परिवेश में प्रभावी प्रबंधन की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। आज इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया प्रोफेसर हेमेंद्र डांगी जी को। आप प्रबंधन विशेषज्ञ हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार।
3: धन्यवाद सर।
2: हेमेंद्र जी, ये प्रबंधन से हम क्या समझे, किस प्रकार का प्रबंधन? एक आर्थिक प्रबंधन भी है, सामाजिक प्रबंधन भी हो सकता है, वित्तीय प्रबंधन जिसे कहते हैं, और एक संस्था, ये प्रबंधन भी हो सकता है। हम किस रूप में आप इसे परिभाषित करेंगे, कहाँ कहाँ इसकी आवश्यकता ज्यादा पड़ती है?
3: प्रबंधन एक ऐसा चीज है जिसको लोग, कुछ लोग जो है इसको एक करिकुलम के तरीके से देखते हैं, एक विषय के तौर पे देखते हैं, पर मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रूप में प्रबंधन कर रहा होता है, चाहे वो उसने फॉर्मल एजुकेशन नहीं भी ली हो या चाहे उसने फॉर्मल एजुकेशन ली हो, चाहे उसने बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री ली हो, पर हर व्यक्ति किसी न किसी रूप

0: ज्यादा से ज्यादा गेन करने की होती है। इससे आप किस प्रकार देखेंगे?
1: वित्तीय प्रबंधन ज्यादा से ज्यादा गेन करने का तो है ही, पर इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज आपके पास है, क्योंकि रिसोर्सेज आपके पास हमेशा सीमित होते हैं, तो उनको किस तरह से उपयोग किया जाए कि उनसे जो हमें रिटर्न मिल सके, उनका उपयोग कर सके, वो मैक्सिमम तरीके से कर सके, शायद वित्तीय प्रबंधन में भी यही मूल मंत्र है। देखिए, प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि प्रबंधन का जो कॉन्सेप्ट है या प्रबंधन का जो विचार है, वो आया था कि जब किसी चीज की कमी हो तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। जैसे पैसे की कमी है, समय की कमी है, तो एक पहलू यह है कि जब संसाधन ज्यादा हो तो मैनेज कैसे किया जाए, एक संसाधन कम हो तो कैसे मैनेज किया जाए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये सिचुएशन है। समय की कमी है तो आप प्रबंधन करोगे, आपके पास

0: लेकिन कई बार ये भी तो होता है कि नई सोच हमने विकसित तो कर ली, लेकिन उसको आगे ले जाने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए उसके पास संसाधन नहीं होते हैं, उसे किस प्रकार से मैनेज करें।
1: बहुत ही अच्छी बात है आपने कही, और वही चीज जो है आप देखेंगे कि अभी जो प्रेजेंट परिस्थितियां हैं उसमें इस पे लेके ही ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। पहले बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति जो है बहुत ही अच्छा उम्दा आइडिया देते थे, पर इकोसिस्टम नहीं होने की वजह से वो आइडिया कभी ग्रो ही नहीं कर पाता था, वो व्यक्ति रिस्क नहीं ले पाता था। अब सरकार का भी ये एक मूवमेंट चल रहा है, स्टार्टअप इंडिया
0: जी
1: जैसे है, या एक हर विश्वविद्यालय में हर कॉलेज में आजकल स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक सेल बनाई जाती है, इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाते हैं। तो उसमें अगर कोई व्यक्ति के पास विचार है, अगर आइडिया है, तो वो संसाधनों की कमी की वजह से पीछे ना रह जाए, इसके लिए एक इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। अब ये इकोसिस्टम रातों रात तो नहीं बन सकता है, अब इसमें एक कल्चरल शिफ्ट आ रहा है। जैसे बड़े बड़े संस्थान है, दिल्ली विश्वविद्यालय है, IIT IIMs है, इनमें तो ये बड़ा एस्टेब्लिश हो चुका है कि भाई इनमें इकोसिस्टम में आप जो है एक इनोवेशन सेल्स बनाइए, एंटरप्रेन्योरशिप सेल बनाइए, बच्चों को स्टार्टअप का मौका दीजिए। और अब Tier 2 Tier 3 सिटीज में, छोटे विश्वविद्यालयों में, इनमें भी एक कल्चर आ रहा है, और मैं पूरा उम्मीद कर रहा हूं कि ये कल्चर जो है जब थोड़े समय बाद पूरे भारत लेवल पर आएगा, तो आपका जो ये बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है कि आइडिया बहुत अच्छा है, अगर बीज बहुत अच्छा है, पर उसको आसपास पानी, खाद, बिजली, प्रकाश ये ना मिले तो कैसे वो ग्रो करेगा। तो ये काम इकोसिस्टम अब विश्वविद्यालय कर रहे हैं, कॉलेजेस कर रहे हैं, इन्वेस्टर कर रहे हैं, और सरकार कर रही है।
0: हेमेंद्र जी, यहाँ पर जब इकोसिस्टम की बात आती है तो हम इसे कई बार कैटेगराइज कर लेते हैं। कैटेगराइज कहते हैं इन द सेंस कि हम लोकलाइज कर लेते हैं। शहर की बात अलग होती है, गांव की बात अलग होती है, और गांव में भी गांव की बात, यानी कि जो बिल्कुल रिमोट एरिया है वहां

0: गया, क्लिक कर गया, तो मार्केट इतना बड़ा है कि जो हम कहते हैं ना यूनिकॉर्न बनना, वो तो अगर कोई बन गया आइडिया तो शेयर मार्केट इंडिया में इतना है कि वो यूनिकॉर्न बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में पेशेंस रखने की जरूरत है, थोड़ा एक्सप्लोर करने की जरूरत है, थोड़ा ये समझने की जरूरत है कि कोई भी आइडिया अगर आपने कंसेप्चुलाइज किया और उसको आप अगर समय देना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा धैर्य की जरूरत है। तो धैर्य अगर आप रखेंगे, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे और अगर आप संसाधनों का सही से उपयोग करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारा जो ये स्टार्टअप फेलियर रेट है ये कम हो सकता है, सक्सेस रेट बढ़ सकता है और सही मायने में जॉब क्रिएटर बन सकते हैं।
1: जी हेमेंद्र जी, आज डिजिटल युग है, तकनीकी युग है, इनोवेशन का युग है, तो इसमें जो प्रबंधन

0: 24 घंटे आपके पास भी हैं, 24 घंटे मेरे पास भी. व्हाट मेक्स यू सक्सेसफुल एंड व्हाट मेक नॉट मी सक्सेसफुल इज द टाइम मैनेजमेंट. तो उस टाइम को जो बेहतर मैनेज कर लेता है वो इतिहास रच लेता है, और जो नहीं कर पाता है वो एक साधारण बन के रह जाता है.
1: एक देखा जाता है कि जो सार्वजनिक संस्थान है, पब्लिक सेक्टर्स हैं और प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उन दोनों में बहुत फर्क हो जाता है, ऐसा क्यों? और उसमें प्रबंधन की क्या भूमिका होती है?
0: प्रबंधन की भूमिका दोनों में सेम है. ओनली थिंग इज, जो मुझे लगता है कि एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है, उस सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी

पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लेके हाजिर हां मैं बलविंदर। दिन दी शुरुआत एक वधिया विचार दे नाल। किसी ने कहा है कि जिथे सबर दृढ़ता ते सख्त मेहनत एक हो जावे उथे जित पक्की हो जांदी है। आओ जानदे हां अज दे प्रोग्राम दी तफसील। अज तुसी सुनोगे पुस्तक पड़चोल लड़ी हेठ डॉक्टर गुरजीत कौर तो पुस्तक समीक्षा। इस तो बाद लोक गीत भी सुनवाए जाणगे, पर सब तो पहला अज दे दिन विशेष बारे कुछ गल्लां कर लैने आ। 30 जुलाई नूं हर साल विश्व मनुखी तस्करी विरोधी दिवस मनाया जांदा है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2013 विच इस दिवस नूं रस्मी तौर ते मनाउण दा ऐलान कीता सी। इह दिन लोकां नूं चेते कराउंदा है कि मनुखी तस्करी एक गंभीर अपराध ते मनुखी अधिकारां दी उलंघना है। इस विच लोकां नूं धोखे नाल फसा के जिनसी शोषण, जबरदस्ती मजदूरी, अंगां दी तस्करी जां होर रूपां विच वरत्या जांदा है। दुनिया भर विच लखां लोक, खास करके औरतां ते बच्चे, गरीब तबके दे व्यक्ति इस बुराई दा शिकार हुंदे ने। इह अपराध संगठित तरीके नाल हुंदा है ते अक्सर गरीबी, बेरोजगारी, युद्ध ते जलवायु तब्दीली वर्गी समस्यावां इस नूं वधाउंदियां ने। इस साल 2026 दा थीम है ट्रैप्ड बिहाइंड द स्कैम, यानी कि धोखाधड़ी दे जालां विच

चाँद पौनी लाजमी है। उन्हां दा साहित्यिक दायरा सिर्फ पंजाबी कविता तक सीमित नहीं है, वो एक बहुभाषाई रचनाकार, कहानीकार अते एक प्रौढ़ अनुवादक हन। उन्हां दे प्रमुख कारजां विच आटे नाल जोड़िया खत अते गड्डी निकल जाएगी काव्य संग्रह, कीड़ा ते होर कहानियां कहानी संग्रह, अखर अखर लो गज़ल संग्रह, मनोहर श्याम जोशी दे साहित्य अकादमी पुरस्कार जेतू

छपितियां चुनिया ने कोरी मोड़े टंगिया माही दूरों हसता चे जुल्फां ने नंगिया सूफ दिया सुथना ने तेड़ सप रंगिया चिट्टा चका ते वास कट काली ते चोए मुतो लाली ओए कंठे वाला।

0: मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
1: डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बारे में जानकारी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने ये विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थियों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी और उन्हें कानून के पूर्ण दंड का सामना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में

पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण और गोवा, कर्नाटक, पंजाब और दिल्ली में भी आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।

0: सतर्क रहिए।
1: साथियों, आप सुन रहे कार्यक्रम आपकी पसंद और मैं हूं आपके साथ अल्पना। और ये देखिए, बहुत सारे हमारे पास संदेश आ चुके हैं। जो सबसे पहला संदेश हम जो ले रहे हैं वो है सतीश अनेजा जी का, और ये कह रहे हैं, प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन है आपका। और सबसे पहले लिख रहे हैं कि सावन का महीना आपके लिए बहुत शुभ हो, आनंदित हो और सावन के गीत सुनवा दीजिए। क्या बात है। देखिए सतीश जी, हमने आपके कहने से पहले ही आपकी शुरुआत कर दी है सावन के गीतों से। जी हाँ, आप सबके लिए भी सावन का महीना बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। अच्छा, जब बात सावन की चल ही रही है तो क्यों ना एक छोटी से मेरे एक सवाल का जवाब आप लोग लिख के भेज सकते हैं कि आप सावन में क्या करते हैं, आपको सावन में क्या पसंद है। सावन की बारिश,

शर्मा, और हमारे साथ हैं झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत और मयंक भाटिया। और हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं मुक्कार पोस्ट कालेगांव माराणवाड़ा से श्री सुधाकर राजेश, प्रशांत कुमार, संचित, प्रथमेश, सर्वेद, प्रणाली सानवी और हर्षिता। इसके अलावा हमारे साथ पूरा व्याल परिवार भी जुड़ा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को और एक और प्यारा सा

इस माह में हम भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम, और हम सभी इसमें भोलेनाथ की आराधना करते हैं और अपने अपने तरीके से अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं अपने ईश्वर को। और अगला जो संदेश है छत्तीसगढ़ पलारी से है, प्रकाश वर्मा का, प्रिंस वर्मा का और निखिल वर्मा का। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं हम अहमद फूलवाले और दुकनी जूही इकबाल, और आपने हमें संदेश भेजा है मुंबई से। बिटिया आमना और नई दिल्ली से हमें भेज रही हैं आसमा, रबिया, राबिया और आशु और समस फूले परिवार वाले, और हमें लिख रहे हैं कि हमें सावन का महीना बहुत पसंद है, ख़ासकर सावन में झूले झूलना और इस महीने में गरम गरम पकौड़े खाना बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात कही है आपने, और सच में जब बारिश हो और सावन की बारिश हो, झूले झूल रहे हो और पकौड़े मिल जाए, क्या बात है। और ये अगला जो संदेश है वो है हरियाणा से सतवीर सिंह का, देवेंद्र, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नाव्या हमारे साथ जुड़ी हुई हैं।

साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद। और देखिए, बहुत सारे और भी संदेश हमें मिले हैं और ये बहुत ही प्यारी पंक्तियों के साथ ये हमें संदेश भेजा है सतप्रकाश सोनोठिया ने। रोहिणी से आप लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, नब से बरसे अमृत की धार, झूम उठी धरती महका संसार, अमावट की रिमझिम छड़ी है भारी, भीग रही सावन में

0: पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले

12.94% मतदान की खबर है। अमेरिका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय किए गए जब ईरान ने इस सप्ताह की शुरुआत में जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में दिलीप महादुगावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल बोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिलीप महादुगावित और मोहम्मद बासिल बोरसिंगा नाकाथ को पदक जीतने पर बधाई दी। भारत 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदकों के सहित कुल 15 पदक के साथ 8वें स्थान पर है। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को आज से श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने आशा व्यक्त की कि आस्था, संयम और भक्ति का यह पवित्र महीना

0: to finish second in a closely fought race. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार। आकाशवाणी के प्रसारण भवन में भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में आयोजित स्वरांजलि कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर्स यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जा रहा है और साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी ऑडियंस इस कार्यक्रम से जुड़ी है। सभी का कार्यक्रम में पुनः अभिनंदन स्वागत। आज स्वरांजलि कार्यक्रम में प्रस्तुति के लिए हमने आमंत्रित किया है शुभम सरकार को। करतल ध्वनि से कलाकार का अभिनंदन कीजिए। शुभम सरकार का जन्म एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ और बचपन से ही संगीतमय माहौल और संगीत के महान दिग्गजों का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ है। आपने ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन से वेस्टर्न वायलिन में चतुर्थ श्रेणी उत्तीर्ण की है। बचपन में ही आपने अपने पिताजी पंडित प्रदीप कुमार सरकार से तबला वादन सीखा और CCRT द्वारा जूनियर और सीनियर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति आपने प्राप्त की। इसके अलावा साहित्य कला परिषद नई दिल्ली द्वारा युवा स्कॉलरशिप से भी आपको नवाजा गया है। 10 वर्ष की आयु से आपने पंडित SL कंडारा से वायलिन का प्रशिक्षण लेना शुरू किया। इसके पश्चात प्रसिद्ध संतूर वादक पद्मश्री अलंकृत पंडित भजन सोपोरी से वायलिन की शिक्षा ली। वर्तमान समय में प्रसिद्ध शास्त्रीय

स्वरांजलि कार्यक्रम में आज शुभम सरकार वायलिन वादन की प्रस्तुति दे रहे हैं। अभी आपने राग गुजरी तोड़ी का आनंद लिया। अगली प्रस्तुति राग चारुकेशी में धुन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
1: आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें, प्रश्नकाल

0: के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में भारत के दिलीप महादू गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। भारत विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। भारत के वरिष्ठ बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। रहाणे ने भारत के लिए अपना आखिरी मैच वर्ष 2023 में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान टेस्ट टीम में खेला था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Rajya Sabha is to take up the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 for consideration and passing. Minister of State.

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी मिलन। और श्रोताओं, सावन का महीना आज से शुरू हो गया है। बारिश, ठंडी हवाओं का मौसम तो ये होता ही है, साथ ही सावन का महीना जुड़ा है भक्ति, साधना और समर्पण से भी। जी हाँ, सावन यानी श्रावण मास का महीना, जो हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का पांचवा महीना होता है। सावन का महीना अत्यंत पवित्र, मंगलकारी और भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है। ये जो पूरा महीना होता है वो देवों के देव महादेव और माता पार्वती को समर्पित होता है, और इस समय भक्त स्वयं को साधते हैं, व्रत पूजा जाप करके वो स्वयं को समर्पित करते हैं अपने आराध्य को। आज हर तरफ भगवान शिव के जयकारों की गूंज है, और इस पूरे महीने ये जो गूंज है वो ऐसे ही होती रहेगी। और आज से, जैसा कि हम कह ही रहे

भैरवी। इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना, आवाज़ थी कविता कृष्णामूर्ति और रूप कुमार राठौर की। श्रोताओं, अब बात होगी दिन विशेष।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना, फिल्म थी गाइड। और अब बात हमारी महिलाओं से जुड़ी हुई। श्रोताओं, महिलाएं घर परिवार की धुरी होती हैं, जिनके इर्द गिर्द पूरा परिवार घूमता है। ऐसे में

0: 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज दोपहर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। सभापति ने बताया कि उन्होंने डॉ. जितेंद्र सिंह की लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने संबंधी सूचना स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि विधेयक की प्रतियां सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं, जिससे वे इसमें संशोधन प्रस्तुत कर सकें। लोकसभा ने कल यह विधेयक पारित कर दिया है। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
1: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
0: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज दिन में 11 बजे सदन

के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस बीच ईरान के खुजिस्तान प्रांत के 4 शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई हैं। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। उधर भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में अमेरिका से 1-2 से हार गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

पूरे देश के दिलों की धड़कने बढ़ा दी थी। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे उस फिल्म की जिसने बोल्डनेस, सस्पेंस और म्यूजिक की परिभाषा ही बदल दी थी। भट्ट कैंप की आइकॉनिक फिल्म, जी हां, मर्डर। एक अधूरी शादी, एक पुराना प्यार और एक गलत कदम जो ले जाता है एक ऐसे मोड़ पर।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम,
1: जी
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डेक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देगा।

श्रोताओं, कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। और कुछ ही पलों पहले आपने सुना था गाना कहो ना कहो। इस गीत को सुनते ही दिल 2004 के उस दौर में चला जाता है, ये बात आप भी मानते होंगे। अब आते हैं कहानी पर। सिमरन यानी कि मल्लिका शेरावत बैंकॉक में अपने पति सुधीर या

के बीच जब ये दोनों करीब आते हैं तो बॉलीवुड को मिलता है एक सबसे रोमांटिक और प्यारा गाना जिसे गाया था कुणाल गांजावाला ने। तो आइए इस गाने को सुनते हैं जिसने कुणाल को स्टार बना दिया था।

फील करने लगा। वहीं दूसरी तरफ सुधीर को अपनी पत्नी के बदले हुए बर्ताव पर शक होने लगा। वो एक निजी जासूस को सिमरन के पीछे लगा देता है। सिमरन एक तरफ अपने पति के शक से डर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सनी की सनक से। दिल में खौफ है, लेकिन बाहर मुस्कुराने की मजबूरी। इसी कश्मकश को बयां करता है ये गाना।

और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म मर्डर की। महेश भट्ट और अनुराग बसु ने मिलकर 2004 में जो थ्रिलर फिल्म बनाई उसने इमरान हाशमी को बॉलीवुड का उभरता सितारा बना दिया। वहीं मलका शेरावत उस दौर की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस बनकर उभरी और इस फिल्म के संगीतकार ने कई सारी बुलंदियां छुई। आज भी जब बारिश होती है या रात के सन्नाटे में कोई थ्रिलर देखने का मन होता है तो इस फिल्म की याद हमें आती है। उम्मीद है आज का ये फिल्मी सफ़र और इस फिल्म के गाने आपको बेहद पसंद आए होंगे। सुधीर, सिमरन और सनी की ये कहानी, ये आइकॉनिक गाने जिसे अभी आपने सुना, तो चलते चलते आपको सुनवाते हैं इसी फिल्म का एक और गीत।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर। 1:40 होने को है, अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी।

0: नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
1: श्री नड्डा ने सभा को सूचित किया कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह दोपहर बाद 2 बजे जनतक परीक्षा में अनुचित साधना की रोकथाम शोध बिल 2026 पेश करेंगे। श्री नड्डा ने सभा में रुकावट पाने लिए विरोधी धिर के विहार और भूमिका की निखेधी की थी। इस तो बाद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस समेत विरोधी पार्टियां

पर हाईकोर्ट ने इसनो पूरी तरह उलट हुकम विच रद्द कर दिता। हाईकोर्ट ने पहला किया सी कि आप नेतावा विरुद्ध पहली नजरे कोई भी केस नहीं बनदा सी अते भारतीय दंड संहिता तहत लाए गए अपराधा दे तत गैर हाजर सन। नतीजे वजो इसने FIR अते दर्ज चार्जशीट नू रद्द कर दिता। FIR 2020 दर्ज की गई सी जिस विच इल्जाम लाया गया सी कि बिजली दरां विच वादे विरुद्ध आप दे विरोध मुजहरे दौरान मान समेत कई पार्टी नेतावां ने करीब 750 तो 800 पार्टी वर्करां नूं चंडीगढ़ विच पंजाब दे समकाली मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह दे निवास वल मार्च करन लई उकसाया सी। पुलिस ने इल्जाम लाया कि मुजहराकारियां ने

0: पंजाब के मुख सकत्तर ते पुलिस डायरेक्टर जनरल नु नोटिस जारी। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। नमस्कार।
1: खबरों तो बाद
2: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। राज्यसभा में पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर बहस होगी, जिसका मकसद पेपर लीक के

0: जब सुबह 11 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने ग्लासगो में 23वें दौलत मुश्तरका खेलों में मर्दों की 100 मीटर दौड़ में पैरा एथलीट दिलीप गावित को सोने का तमगा देने और जीतने और मोहम्मद बासिल को चांदी का तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी। बाद में जब स्पीकर ने वक्फे सवालात चलाने की कोशिश की तो अपोजिशन अरकान ने तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई पर नारेबाजी शुरू कर दी। अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट इस मामले पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बयान का मुतालबा कर रहे थे। जनाब बिरला ने कहा कि ऐवान की कार्रवाई में रुकावट पैदा करना पार्लियामानी रिवायात के मुताबिक नहीं है।
1: 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में श्री दिलीप गावित ने स्वर्ण तथा श्री मोहम्मद बासिल ने रजत पद जीता है। श्री मुरली शंकर ने रजत पद जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ।
0: शोरगुल जारी रहा और ऐवान की कार्रवाई दोपहर

3% वोटिंग दर्ज की गई है। पोलिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी की सिर्फ खवातीन पर मुश्तमिल सेलिंग टीम से बातचीत की और उनकी गैरमामूली कामयाबी और पुख्ता आज़म की सताइश की। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि सेलिंग उनकी कामयाब मुहिम मुल्क के लिए इंतहाई बाइस फख्र है। शरवन महीने की सालाना कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। इस कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी तादाद में अकीदतमंद गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार, गौमुख और गंगोत्री जाते हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हुकूमतों ने बड़ी तादाद में अकीदतमंदों के लिए वसी तर इंतजाम किए हैं। मरकजी वजीर दाखिला और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज श्रावण के पवित्र महीने के आगाज पर लोगों को मुबारकबाद दी है। भारत के महकमे मौसमियात ने महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और मगरबी मध्य प्रदेश में आज शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, केरला, माहे और राजस्थान में अगले 2 दिन के दौरान गरज चमक के साथ तेज से बहुत तेज बारिश की पेशगोई की है। कर्नाटक के साहिली और जनूबी अंदरूनी इलाके, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा में कल तक इसी तरह के हालात बने रहने का इम्कान है। इस दौरान पंजाब, ज़ैली हिमालय, मगरबी बंगाल और सिक्किम में भी तेज से बहुत तेज बारिश का इम्कान है। IMD ने शुमाल मशरकी भारत में अगले 2 से 3 दिन तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश की पेशगोई की है। इस दौरान कौमी राजधानी में अगले 2 से 3

कनकलता। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा।

0: रूप नहीं है।
1: मैंने कई बार सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है, प्रश्नकाल माननीय सदस्य का अधिकार है और प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। मैंने ये आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्या

0: कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने पर मेटा ने अफसोस जाहिर किया है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना की वजहें बताने को कहा है, साथ ही ऐसी गलतियों को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी दर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि पंजाब में फार्मास्यूटिकल्स परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। उन्होंने मांग की है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए, साथ ही पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की भी मांग की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में तीन निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 1 बजे तक पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर लगभग 20% मतदान हो चुका था। गुजरात की मंजलपुर सीट पर 21.66% मतदान की खबर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
2: वडोदरा के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। भाजपा ने वडोदरा महानगर पालिका के पूर्व पार्षद सतीश पटेल को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष भीखा भाई रबारी पर दाव लगाया है। इस चुनाव में 2 लाख

0: मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। विधानसभा क्षेत्र के सभी 291 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर केंद्र पर वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी जा रही है। दतिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,20,000 मतदाता हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के बीच माना जा रहा है। यह उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद हो रहा है। दतिया उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान की महिला टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
2: आपने इस अभियान से, मैं कह सकता हूँ कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी

0: में रहने वालों लोगों में चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक और बिजली गिरने के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा में भी कल तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में विभाग ने अगले दो से तीन दिनों तक

0: रिगार्ड कॉर्प्स के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी कमांड के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य ईरान और उसके समर्थित समूहों से अमेरिकी सैनिकों, वाणिज्यिक जहाजों तथा खाड़ी क्षेत्र के पड़ोसी देशों को होने वाले खतरों को कम करना है। इस बीच ईरान के खुजेस्तान प्रांत के 4 शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का क्रूर हमला जारी है। इसमें 40 से अधिक नागरिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के प्रदर्शनकारी वर्तमान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की क्रूरता और लक्षित हत्याओं को लेकर रावलकोट के डी चौक पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मानवाधिकार संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से पाकिस्तानी बलों द्वारा घातक गोलीबारी की घटनाओं में हस्तक्षेप करने की अपील की है। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कनाडा के ऑन्टेरियो में भारतीय

तो श्रोताओं, आज मैं लेकर आई हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है एक ही कलाकार। इस कार्यक्रम में हम हर बार ऐसे कलाकार के जीवन, संघर्ष, सफलता और उनके सदाबहार गीतों की खूबसूरत यात्रा आपके सामने लेकर आते हैं, जिसने अपने हुनर से करोड़ों दिलों में एक खास जगह बनाई। क्यों? तो आज हम जिस महफिल में सजाने लेकर आए हैं, जिनका नाम हम लेकर आए हैं, एक ऐसी आवाज़ है जिसने प्यार को ना सुर दिए, दर्द को आवाज़ दी, देशभक्ति को भी नई ऊंचाइयां दी। और भक्ति संगीत की तो क्या बात करें, उनकी आवाज़ की इतनी मधुर गायिका थी कि वो सबके दिलों में अमर कर जाती है। तो हम बात कर रहे हैं, अरे बात तो हम कर रहे हैं लेकिन किसकी, वो आपको बताना है। जी हाँ, रहना है तो कुछ तो आपको कहना है। तो हम आपके लिए एक छोटी सी बात बताना चाहेंगे कि आज उनका जन्मदिन है, 30 जुलाई उनका जन्मदिन होता है। और सबसे पहली बार, यानी कि हमें विश तो करना पड़ेगा ना, और हमारे खास इतने सुर के जो महान गायक हैं उनकी आवाज़ दिलों पर छा जाती है, तो आज उनका जन्मदिन है तो आकाशवाणी की तरफ से और हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से इनको ढेर सारी बधाई। ईश्वर करे कि वो हमेशा खुश रहें, उनकी आयु बढ़ती रहे, उनकी आवाज़ इसी तरह से दिलों पर राज करती रहे और हम उनकी आवाज़ को इसी तरह से सुनते रहें। तो हमें आप श्रोता जल्दी से गेस करके बताएं कि आज किन का जन्मदिन है, कौन है वो जिनकी आवाज़ हम

बहुत सारे मैसेज हमें आए हैं। फारूक अली खान जी का हमें मैसेज सबसे पहले आया, लेकिन जवाब जो सबसे पहले दिया वो हमने बता दिया। फिर हमारे पास आया निसार अली जी का जवाब। भूषण खेरा जी ने हमें मैसेज किया पंजाब खेड़ा से, और पवेरा भूषण खेरा, विष्णु खेड़ा, बहुत सारे मैसेज हमारे आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सदानंद जी का, तनुजा जी का, नीतीश, इताशांत, लखन, सावित्री। अब चलते हैं, सुनते हैं गीत।

मिफरा बेबी, और जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमोत कौर मनु जी का, और मसूर हसन जी का मैसेज आया हमें, आर कुमार जी का पंजाब से, वर्डिंग खेड़ा मिंटू, पिंकी लवली आरती, और दिग्दर्शन गौर जी का भी हमारे पास, कविता गौर जी का मेरठ से मैसेज आया है, और फिर हमारे पास फगुराम यादव जिनका, उन्होंने भी सही जवाब, सभी ने सभी सही जवाब दिया, संबलपुर कांकेर, फगुराम, ज्योति, ओजस्वी।

साहब जी की, और उनके बारे में हम क्या बताएं, कई भाषाओं में महारत उन्होंने हासिल की। सोनू निगम जी ने हिंदी के अलावा बंगाली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, नेपाली और अंग्रेजी, यानी कि अंग्रेजी सभी भाषाओं में, यहाँ 30 से भी अधिक भाषाओं में 6,000 से भी अधिक गाने रिकॉर्ड किए गए। और कहते हैं कि सोनू निगम हर रिकॉर्डिंग से पहले घंटों रियाज करते थे। उनका मानना है कि कलाकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये बहुत ही खूबसूरत सी बात है, बिल्कुल सही। और सोनू निगम जी के स्टूडियो के बेहतरीन गायक ही नहीं बल्कि एक लाइव कॉन्सर्ट भी वो बहुत अच्छे से करते हैं, और उन्हें कई अवार्ड से नवाजा भी गया है। जी हाँ, उनको काफ़ी अवार्ड मिले हैं। भाई, आवाज़ इतनी खूबसूरत है तो क्यों ना मिले। और इसी तरह से दोस्तों कहते हैं कि इनकी आवाज़ इतनी अच्छी ना, सीमा पर जो तैनात हर जवान

नागरिक बने, सबकी मदद करें, जब कर सकें तो ज़रूर करें, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। और सुनते रहें आपके आकाशवाणी दिल्ली इंद्रप्रस्थ चैनल, क्योंकि हर आवाज़ कुछ कहती है मेरे दोस्त।

चलिए जवाब दीजिए जल्दी से कि क्या करना चाहते हैं, आपकी कौन सी तमन्ना है जो पूरा करना चाहते हैं, और वो तमन्ना क्या है, हम भी तो जाने आपके थ्रू, मैं भी अपनी बताऊंगी, पहले आप बताइए। चलिए बढ़ते हैं इस कार्यक्रम की ओर, इस गीत खूबसूरत नगमे के साथ।

लेकिन समय बहुत है, कोई बात नहीं, कल नहीं हुआ आज हो जाएगा, है ना। हर वक्त आपका है, हमारा है। पुराने जो गीत हैं ये खूबसूरत हैं, हमें अभी भी, आज भी, जब भी हम अंताक्षरी खेलते हैं तो हमें यही गीत याद आते हैं, क्यों, सही कहा ना। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले गीत की ओर, जो कि है शमशाद बेगम की आवाज़ का खूबसूरत सा ये नगमा।

जी हाँ, सब दिल में रहना। कुछ काम हमें ऐसे करने चाहिए जो दिल में बस जाएं, वो याद बन के रह जाएं कि अरे ये इसने बहुत अच्छी बात कही थी, है ना। हम अपनी पहचान बना पाते हैं जब हम अच्छी सी बातें किसी के साथ करते हैं, कुछ ऐसी बातें जो दिल को छू जाएं।

आप ही बताएं, ये कोई बात है? मैं आपके पास यहाँ आ गई हूँ, कार्यक्रम दे रही हूँ, और आप हैं कि वैसे आप मैसेज कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ग्राम पंजोलिया, जिला जलौल से, उत्तर नगर से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया जी का हमारे पास मैसेज आया है। असलम खान जी का मैसेज आया कि नमस्कार, आपने ये प्रोग्राम चला के जैसे हमारे सुनने वालों की दिल की मुराद पूरी कर दी, और आपके प्रोग्राम केवल रेडियो पर सुनता हूँ। असलम खान, रेशमा हमारी प्यारी सी पोते और यूपी बिजनौर नंगली जाजू से, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें मैसेज करने के लिए। और इसी तरह से कार्यक्रम से जुड़े रहिएगा, आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ आपके लिए लेकर आता है अलग अलग खूबसूरत खूबसूरत कार्यक्रम, रेडियो प्रोग्राम्स, तो सुनते रहिएगा और इसी तरह से लुफ्त उठाते रहिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले गीत। ये जो हमने सुना, हमने आपसे पूछा था कि कौन से फिल्म का है, तो ये चलती का नाम गाड़ी 1958 की फिल्म का और किशोर दा की आवाज़ का ये खूबसूरत नगमा आपने सुना। अब हम बढ़ते हैं अगले एक प्यारे से खूबसूरत नगमे की ओर।

हाँ जी, आप सुन रही हैं मैटिनी मेलेडी, और हमारे पास मैसेज आया है अरविंद कुमार जी का। उन्होंने अपनी फरमाइश भेजी है। जी हाँ, हम आपके इस फरमाइश को ज़रूर शामिल करेंगे और सुन ये वाला जो गीत है आपका ज़रूर प्ले करेंगे।

उम्मीद करती हूँ आज की मैटरनी मेलोडी कार्यक्रम में आपकी यादों के कुछ पन्नों को फिर से खोल दिया मैंने। तो रैना तवर लेती है इस कार्यक्रम से इजाजत, फिर मिलेंगे पुराने दौर के अनमोल नगमों के साथ, क्योंकि पुराने गीत कभी पुराने नहीं होते, वे हर बार दिल को एक नया एहसास दे जाते हैं, इसलिए तो हमेशा याद आते हैं। तो सुनते रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल, क्योंकि हर आवाज कुछ कहती है मेरे दोस्त। और हाँ, जाते जाते कुछ करो ऐसा जो दूसरों के चेहरे पर दे मुस्कुराहट और आपके दिल को दे सुकून।

क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए। रुदादे मोहब्बत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए। दो दिन की मसर्रत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए। आइए सामीन, आशा भोसले की आवाज़ में गज़ल सुनते हैं। कलाम है सागर सिद्दीकी का।

सामेन, अभी आप जगजीत सिंह की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे। कलाम था फ़ाइज़ अनवर का। सामेन, खुद एतमादी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। अगर कोई शख्स

लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे आवंटित किए गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि नए कानून के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावटी

राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों की कुशल क्षेम की भी कामना की। पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट हटाने पर मेटा ने खेद व्यक्त किया है। नई दिल्ली में आज इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस व्यक्त करते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा की वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना के कारण बताने को कहा है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव का मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर दोपहर 1 बजे तक 20%, गुजरात की मंजलपुर सीट पर 21% और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर 48% मतदान दर्ज हुआ। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के सदस्य देशों की परिषद के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार ने आज नई दिल्ली में

ये एक अज्ञात गुमशुदा पुरुष का शरीर है जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष, कद 5 फुट 6 इंच, रंगे हुआ बाल काले हैं, आँख कान और नाक औसत। श्रोताओं, ये शरीर ग्राम कुचावली के जंगलों में मुरादाबाद यूपी से मिला है। अगला गुमशुदा व्यक्ति भी अज्ञात है। ये एक महिला है जिनकी उम्र है 55 साल। ये छजलैट बिजनौर रोड पर मृत मिली है। और अगला गुमशुदा व्यक्ति भी अज्ञात है। ये एक पुरुष हैं जिनकी उम्र लगभग 35 साल,

से या कोई भी सूचना आपको मिले तो आप सबसे पहले अपने नज़दीकी पुलिस थाने में इसकी सूचना दें, और इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर 112 पर कॉल करके सूचना साझा कर सकते हैं। अभी आप गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचना सुन रहे थे।

0: बिना किसी वजह के भीग जाना। और तुम?
1: मेरे लिए सावन याद दिलाता है कि प्रकृति कैसे हर साल खुद को नए रंगों से सजा लेती है ना? शायद इसीलिए हमें भी इस मौसम में अपनी जिंदगी में थोड़ी सी नई ऊर्जा और पॉजिटिविटी भर लेनी चाहिए।
0: बिल्कुल। और भारत के अलग अलग हिस्सों में सावन को अपनी अपनी परंपराओं के साथ मनाया जाता है। कहीं कांवड़ यात्रा की रौनक होती है, कहीं लोकगीत और झूले, तो कहीं हरियाली तीज का त्योहार।
1: बिल्कुल, भारत तो है ही त्योहारों का देश,

0: सुहानी, कार्यक्रम शुरू हो गया है, अब तो फोन साइड में रख दो।
1: सॉरी सॉरी, एक्चुअली थोड़ी देर पहले ही ना मुझे मेल पे एक जॉब ऑफर आया है, तो मैं वही पढ़ रही थी हिमांगी।
0: अरे वाह, कंग्रेचुलेशंस सुहानी। जरा मुझे भी तो बताओ, आखिर मेल पे क्या लिखा है?
1: हाँ, तो इस पे लिखा है कि डियर मिस सुहानी धापा, वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू।

0: ये जॉब मेरे हाथ से भी जा सकती है।
1: ऑफर तो अच्छा है, काफी ज्यादा अच्छा है, पर सुहानी, दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगी। कल ही सोशल मीडिया पे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था साइबर स्लेवरी नेटवर्क के ऊपर।
0: अच्छा, वो क्या है?
1: तो दरअसल सुहानी, आजकल ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक नया और बेहद खतरनाक रूप सामने आया है, जिसे साइबर स्लेवरी कहते हैं। हमारे जैसे ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट्स और जॉब सीकर्स को विदेश में शानदार नौकरी, अच्छी सैलरी, फ्री वीजा, रहने

0: सिक्योरिटी एक्सपर्ट भूमिका व्यास जी को, जिनसे बात की है पीयूष द्विवेदी ने।
1: भूमिका व्यास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू
1: मैम। अक्सर हम दोस्त आपस में बैठकर किसी चीज को खरीदने की बात करते हैं और थोड़ी ही देर बाद सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उसका एड आने लगता है, तो क्या ये सच है कि फोन हमारी बात सुनता है?
2: देखिए, इसके पीछे का आपको थोड़ा टेक्निकल समझना पड़ेगा। बीसीजी की सबसे पहले रिपोर्ट को देखेंगे तो 50% जनता अपना फोन जब भी उठाती है उन्हें खुद नहीं पता होता उन्होंने फोन किस लिए उठाया। तो आप पहले देख सकते हैं कि हम एक ऑटो पायलट मोड पर जा चुके हैं। हमारे पास कोई फोन उठाने का भी रीजन नहीं है, बस हमें देखना है कि कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, इंस्टाग्राम पे कोई रील तो किसी ने मुझे नहीं भेजी। एड्स आपको वही दिखाई देते हैं जो आप सोच रहे होते हैं। इसके लिए आपको एआई का एल्गोरिदम समझना होगा। इंस्टाग्राम को लेकर चलते हैं। आपने इंस्टाग्राम पे कुछ भी सर्च किया, मेटा आपके हर मूव को ट्रैक कर रहा है। अब आप समझ के चलिए आप इंस्टाग्राम के कस्टमर नहीं रहे हैं, इंस्टाग्राम के आप एक प्रोडक्ट हैं। आज का डेटा ही गोल्ड है। इस डेटा

6 घंटे बाद। देख के चलिएगा, सिर्फ वही पैसा रिकवर हो पाता है जो 1 घंटे या मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर उनके पास कॉल आया हो। कॉल का नंबर मैं सभी आपके ऑडियंस को भी बता देना चाहती हूँ, इट्स 1930। आप याद करके चलिए, फ्रॉड हुआ नहीं, नेक्स्ट मिनट में आपने कॉल करना है 1930 पर। अगर आपने 2-3 घंटे बाद कॉल किया, हैकर्स इतने स्मार्ट होते हैं, वो समझ गए हैं कि ठीक है हमारा अकाउंट फ्रीज हो सकता है, वो सारा पैसा मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में डाल देते हैं। सेकेंडली, अगर आपको कोई ईमेल आता है, कोई फिशिंग का ईमेल है, कोई आपको ये ईमेल कर देता है कि अगर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपकी लॉटरी लग जाएगी, इस तरीके के कोई भी मैसेज पे क्लिक ना करें। और अगर इस तरीके के ईमेल आते भी हैं और आपको लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन चक्षु

0: education, including the study of science and mathematics, while encouraging people to value India's cultural heritage.
1: यही नहीं, उन्होंने ब्रह्म सभा, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया, की स्थापना की. इस संस्था ने सामाजिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता और तार्किक सोच को बढ़ावा दिया.
0: And Raja Ram Mohan Roy also stood firmly for the freedom of the press

0: ही चलता रहेगा। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमें दीजिए अनुमति, मुझे हिमांगी
1: और मुझे सुहानी को। और हाँ दोस्तों, युवावाणी कार्यक्रम का फीडबैक युवावाणी feedback@gmail.com पर भेजना ना भूलिएगा।
0: नमस्कार।

0: जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्रगीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
1: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हो गई है। लोकसभा ने विधेयक कल पारित कर दिया था। भोजनावकाश के बाद कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। चर्चा के लिए 7 घंटे आवंटित किए गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक देश के छात्रों, युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। डॉक्टर सिंह ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल और प्रश्न पत्र लीक को कतई बर्दाश्त नहीं करने के मोदी सरकार के संकल्प को दोहराया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस विधेयक को लाने में

0: फाइनल में जगह बनाई। नीरज 5वीं, रोहित और यशवीर 9वीं और 10वीं स्थान पर रहे। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Parliament has passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Minister of State for Home Nityananda Rai has moved the bill in Lok Sabha to further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as

0: लोक रंजनी के सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: पायल, आज सावन भी शुरू हो गया है और हमारे जो लोक रंजनी कार्यक्रम है, इसमें हम अपने मौसम है या हमारे तीज त्यौहार हैं या फिर कोई भी हमारे फंक्शन होते हैं, उनके मुताबिक हम संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम में गीतों को शामिल करते हैं।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। और निरंकार भाई, देखिए हमारे इस लोक रंजनी कार्यक्रम से कहीं ना कहीं मिट्टी की महक या मिट्टी की खुशबू तो आती ही है।
0: बिल्कुल। और जब हम सावन की मल्हार सुनते हैं तो लगता है संगीत के अंदर ही बारिश हो रही है।
1: बिल्कुल, तो आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले अपने सभी श्रोताओं को सुनवाते हैं पूजा शर्मा से एक सावन गीत।

0: क्या बात है कि जो सावन में क्या मनस्थिति होती है उसका जिक्र इसमें किया पूजा शर्मा ने। और अब जो सुनवाएंगे
1: अगला जो लोकगीत है वो सुनवाएंगे करमपाल और मंजू शर्मा की आवाज में, एक प्यारा सा लोकगीत।

0: सुन रहे थे करमपाल शर्मा और मंजू शर्मा से ये दो गाना। और निरंकार भाई, अब हम अपने सभी भाई बहनों को सुनवाते हैं ऋषिपाल खदाना और मीनाक्षी की आवाज़ में एक और दो गाना।
1: आइए सुनते हैं।

हुए 10.71 सेकंड की टाइमिंग्स के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने न केवल पहला स्थान हासिल किया बल्कि नया कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया। दिलीप की इस उपलब्धि ने भारत के खाते में एक और स्वर्ण पदक जोड़ दिया और भारतीय दल का मनोबल भी ऊंचा कर दिया। इसी स्पर्धा में रजत पदक भी भारत के ही मोहम्मद बेसिल ने 10.83 सेकंड की शानदार टाइमिंग्स के साथ जीता। बात करें दिलीप गावित की तो महाराष्ट्र के नासिक के पास तोरण डोंगरी नामक एक छोटे से गांव में जन्मे दिलीप एक साधारण किसान परिवार में पले बड़े। बचपन से ही वे खेतों में अपने माता पिता की मदद करते थे। जब वे केवल 5 से 6 साल के थे तभी पेड़ से गिरने के कारण उनका दाहिना हाथ बुरी तरह घायल हो गया और उनको हाथ कटवाना पड़ा। इस कठिनाई के बावजूद दिलीप ने अपनी विकलांगता को अपने भविष्य पर हावी नहीं होने दिया। दौड़ना उनकी ताकत और जुनून बन गया। गांव की धूल भरी सड़कों पर अभ्यास करते हुए उनके हुनर पर कोच बैजनाथ काले की नजर पड़ी, जिन्होंने उन्हें प्रोफेशनल पैरा एथलेटिक्स में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन दिया। कड़ी मेहनत और समर्पण से दिलीप एक छोटे गांव के एथलीट से अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बन गए। उन्होंने 2022 एशियाई पैरा खेलों में पुरुषों की 400 मीटर T47 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और खेलों में भारत का ऐतिहासिक 100वां पदक हासिल किया। इसके बाद उन्होंने पेरिस 2024 पैरालंपिक में पुरुषों की 400 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में पहुंचकर देश को गर्वित किया। आज दिलीप गावित अनगिनत युवा एथलीटों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि दृढ़ निश्चय और साहस सबसे बड़ी चुनौतियों पर भी विजय पा सकते हैं। बात करें एथलेटिक्स की तो भारत के स्टार लंबी कूद खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने एक बार फिर अपनी विश्व स्तरीय क्षमता का प्रदर्शन किया। श्रीशंकर ने 8.09 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाकर रजत पदक जीता। मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। शुरुआती 3 प्रयासों तक श्रीशंकर शीर्ष पर थे लेकिन बाद में जमैका के ताजे गेल ने 8.09

1885 अंक उन्होंने लॉन्ग जंप में हासिल किए, जहां पे उनका तीसरा स्थान था। और शॉटपुट की बात करें तो वहां पे तेजस्विन शंकर को 2553 अंकों के साथ चौथा स्थान हासिल हुआ। इस स्पर्धा में फिलहाल बात करें तो कनाडा के डेमियन वार्नर 2749 अंकों के साथ सबसे ऊपर चल रहे हैं। आज ही पुरुषों के जेवलिन थ्रो के क्वालिफाइंग राउंड पर भी सबकी निगाह रही। इस स्पर्धा में नीरज चोपड़ा के साथ यशवीर और रोहित यादव भी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारतीय खेल प्रेमियों के लिए ये दिन का सबसे बहुप्रतीक्षित मुकाबला रहा, जहां पर तीनों ही भारतीय खिलाड़ियों ने अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और अगर अंकों की बात करें तो नीरज चोपड़ा अपना सर्वश्रेष्ठ 79.61 मीटर भाला फेंक कर

बार फिर एक्शन में दिखाई देंगे। पुरुषों की 200 मीटर सेमीफाइनल में अमलान बोरगोहेन भारतीय उम्मीदों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और बात करें तो 31 जुलाई की तड़के यानी कल सुबह महिलाओं के डिस्कस थ्रो फाइनल में निधि रानी और सीमा पदक के लिए मैदान में उतरेंगी। इसके बाद महिलाओं की 5000 मीटर फाइनल में पारुल चौधरी भारत के लिए पदक जीतने की कोशिश करेंगी। कुल मिलाकर आज के दिन की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स का 8वां दिन भारत के लिए बेहद व्यस्त और महत्वपूर्ण रहने वाला है। नीरज चोपड़ा, तजिंद

0: है उस पर हमारे वरिष्ठ साथी शाहिद आजमी ने मनप्रीत सिंह जो कि भारतीय टीम में शामिल हैं उनसे बात की, उनके हॉकी करियर की, एशियन गेम्स के लिए और वर्ल्ड कप के लिए टीम की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या भूमिका रहने वाली है उनकी, इन सब पर। तो आइए सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को ये बातचीत।
1: मेरे साथ हैं मनप्रीत सिंह। आपको बता दें, वर्ल्ड कप शुरू होने में महज 15 दिन का समय बाकी रह गया है। भारतीय टीम 51 साल का सूखा खत्म करने के लिए उतरेगी, लेकिन मेरे साथ एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 4 बार ओलंपिक खेला है, 2 बार पदक जीता है, सबको पता है 2020, 2024। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेलों में 3 एडिशन खेले हैं, जिसमें से उन्होंने सिल्वर

0: मुश्किल नहीं होना चाहिए, हालांकि इंग्लैंड है, पाकिस्तान है, वेल्स है, कैसे देखते हैं जो शुरुआती जो आपका ग्रुप है?
1: ग्रुप काफी अच्छा है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इनके साथ मैचेस खेल चुके हैं, ठीक है। रिसेंटली जो हमारी प्रो लीग के मैचेस थे उसमें हम लोग इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों टीमों के साथ खेले थे, वेल्स के साथ नहीं खेले हैं, बट उन दोनों के साथ काफी अच्छे मैचेस रहे, काफी कुछ सीखने के लिए मिला कि क्या उनके प्लस पॉइंट है, क्या उनकी वीकनेस है, कहाँ पे हम लोग उनको हर्ट कर सकते हैं, कि हम लोग कैसे और गोल मार सकते हैं, तो वो काफी अच्छा रहा हमारे लिए। और वर्ल्ड कप में ऐसा है कि हमारा पर्सनली ये रहेगा कि हाँ, कि किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि भले ही जो अभी जैसा भी हो, हम लोग अपना हर मैच में पूरा बेस्ट करें।
0: जी।

0: बारे में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं रहा, क्या बताएंगे, क्या वजह आपको लग रही है, अनुभव अपने अनुभव से बताइए। यहाँ से सीखने के बाद या वर्ल्ड कप के बाद एशियन गेम्स आएगा, इसी में समावेश दोनों सवाल, FIH में क्यों बेहतर नहीं कर पाए और एशियन गेम्स आने वाला होप्स को लेकर।
1: इतना खराब परफॉर्मेंस नहीं रहा था हमारे, तो पहले जो चार मैचेस जो राउरकेला में होते वही थोड़ी सी हम लोगों ने अगर देखा जाए तो थोड़े ज्यादा गोल से हम लोग हारे थे, बट उसके बाद जो टीम का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, उसके बाद हम लोगों ने चार मैचेस हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया हॉबर्ट में

0: इससे पहले वर्ल्ड कप का एक इतिहास दोहराने की जरूरत है। उम्मीद करेंगे मनप्रीत जी आपका जो अनुभव है 417 मैचों का वो यहाँ काम आएगा। आपने आकाशवाणी दिल्ली को समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच सर।
0: थैंक यू मनप्रीत
2: जी। अतुल, तो ये हुई बात हॉकी की, और आकाशवाणी की ओर से हॉकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सुनते हैं डीपीएल पर, जो कि कल से शुरू हो रहा है, आपकी एक रिपोर्ट।
3: बात करें दिल्ली प्रीमियर लीग 2000 के सामने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहती है। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के कप्तान आयुष बदोनी का कहना है कि इस बार सभी टीमें काफी मजबूत नजर आ रही हैं। उनकी टीम ने अच्छी तैयारी की है और लक्ष्य पूरे टूर्नामेंट में लगातार अच्छे प्रदर्शन करते हुए दर्शकों का मनोरंजन करना है। पिछले सीजन की चैंपियन वेस्ट दिल्ली लॉयंस के उप कप्तान आयुष दोसेजा ने कहा कि खिताब जीतने से टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है, लेकिन इस बार चुनौती पहले से कहीं अधिक कठिन होगी क्योंकि सभी टीमों ने अपने अपने स्क्वाड को मजबूत किया है। उनका लक्ष्य लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपनी बादशाहत बरकरार रखना है। आउटर दिल्ली वॉरियर्स के कप्तान सिद्धांत शर्मा ने विश्वास जताया कि उनकी टीम के खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे और अपने समर्थकों को गर्व महसूस कराने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं सेंट्रल दिल्ली किंग्स के कप्तान यश धूल ने कहा है कि दिल्ली प्रीमियर लीग युवा खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का शानदार मंच है। उनकी टीम निडर क्रिकेट खेलने के साथ साथ पूरे टूर्नामेंट में निरंतरता बनाए रखने पर ध्यान देगी। ईस्ट दिल्ली राइडर्स के कप्तान मयंक रावत ने कहा कि टीम का हर खिलाड़ी उत्साहित है और दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर

0: को सेमीफाइनल में जापान की साइका उचिदा से हार का सामना करना पड़ा। अब रूस की इरीना तस्सेदीवा के खिलाफ कांस्य पदक के लिए मुकाबला करेंगी। वहीं से 73 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में गरिमा को अमेरिका की कैली उमले ने 7-5 के करीबी अंतर से हार सामना करना पड़ा। गरिमा अब स्पेन की पाउला बेनेक्या पेरोजा के साथ कांस्य पदक के लिए मैच पर उतरेंगी।
1: जी हाँ, ये तो बात हुई अंडर 17 रेसलिंग की। और कॉमनवेल्थ गेम से ये एक अपडेट ये है कि ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु मेंस ट्रिपल जंप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। और हिम्मत, ये तो बात हुई कॉमनवेल्थ गेम्स की। और स्क्वैश की बात करें, जहाँ पे वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप कनाडा में चल रही है, तो वहाँ से भी रिपोर्ट सुनवा देते हैं अपने श्रोताओं को। वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर टीम चैंपियनशिप की बात करें तो कनाडा के ओंटारियो में चल रही वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में भारत के लिए कल का दिन मिला जुला रहा। भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में तीसरी वरीय इंग्लैंड को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। अब उसका मुकाबला यूएसए से होगा। वहीं भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में यूएसए से 1-2

0: किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्रगीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
1: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हो गई है। लोकसभा ने यह विधेयक कल पारित कर दिया था। भोजन अवकाश के बाद कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। चर्चा के लिए 7 घंटे आवंटित किए गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधेयक देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना कोई समय गवाए घोषणा की है कि किसी भी छात्रों के भविष्य को खतरे में

प्रश्नपत्र कदाचार निरोधाय संशोधन विधेयक राज्यसभायां विचाराधीनः। दिल्ली छात्र प्रदर्शने द्रुत कार्यबलस्य आयुधवृत्तं सुरक्षितं रक्षयितुं सर्वोच्च न्यायालयस्य आदेशः। महाराष्ट्र तेलंगाना विदर्भ पश्चिम मध्य प्रदेश राज्येषु अति वृष्टिपरा रक्त संचेतना उद्घोषिता ऋतु विज्ञान विभागेन। अपि च ग्लास्गो राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतस्य कुंत प्रक्षेपकाः नीरज चोपड़ा रोहित यादवः यशवीर सिंहश्च अंतिम चरणे प्रविष्टवन्तः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। संसदा राष्ट्रिय गौरव अपमान निवारण विधेयकः षड्विंशतिः

0: संयुक्त राष्ट्र संघाय अन्ताराष्ट्रिय मानवाधिकार संघटनेभ्यः च साग्रहम् आवेदितं यत् ते अस्मिन् विषये शीघ्रमेव हस्तक्षेपं कुर्युः। ग्लास्गो नगरे आयोजितासु राष्ट्रमण्डल क्रीडासु भारतस्य प्रसिद्धः कुन्त प्रक्षेपकः नीरज चोपड़ा स्वस्थानं सुरक्षितम् अकरोत् इति वार्ताः।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुने कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: सावन के कुछ गीत सुनने के लिए फरमाइशें हमारे पास आ चुकी हैं।
1: और सावन का गीत ही सबसे पहले फरमाइश पर हम सुनवाएंगे और फरमाइश पढ़ देते हैं। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लाल गिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, ये हैं। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग और इनका परिवार, ये हैं। गांव चोहरदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया और इनका परिवार, ये हैं। गांव डंडी तहसील भद्रवाहा जिला डोडा जम्मू कश्मीर से पुरुषोत्तम कुमार, शेख जफर हसन, राकेश कुमार, मोतीलाल और नूर महल महसोल, सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहानाज, तलत जहानाज और फरत जहानाज और इनका परिवार, ये हैं। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा, भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिम्पल और इनका परिवार।
0: ये फरमाइश हमारे पास आई है नगर निगम वार्ड 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से। भेजने वाले भाई हैं अकरम हुसैन, प्रिंस डाक बाबू और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये फरमाइश हमें भेजी है जटवाड़ा गाजियाबाद से। भेजने वाले भाई हैं शीशपाल अकेला, मेहरनगर, उमरखेड़, महाराष्ट्र से भी हमें फरमाइश भेजी है अभिजीत गौहणकर, राही और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। बक्सर बिहार से हमें फरमाइश भेजने वाले भाई हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और इनके परिवार के सभी सदस्य। डुमराव बिहार से

0: पंजाब से हमें ये SMS भेजा है राज शर्मा, मीना शर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। योगी मोहल्ला बराड़ा जिला अम्बाला से SMS भेजा है रवि कुमार राहुल और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। रामगढ़ कैंट से भी हमें SMS मिला है महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब का, और ये SMS हमें भेजा है हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से। भेजने वाले भाई हैं रजाक मोहम्मद, शमी बेगम और इनके परिवार के सभी सदस्य। जनकपुरी सहारनपुर से ये SMS भेजा है जॉन डिकेस्ट्रो और परिवार के सभी सदस्यों ने। गांव वाली मोहम्मद, जिला सिरसा हरियाणा से हमें SMS भेजा है सुभाष लोना और ओमवती का। ये SMS हमें भेजा है भोपालगढ़ राजस्थान से। भेजने वाले भाई हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और इनके परिवार के सभी सदस्य। बेहर वाला खुर्द सिरसा से SMS भेजा है बलवंत जाखड़ और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। हनुमानगढ़ टाउन से ये SMS हमें भेजा है सुल्तान सिंह, कृष्ण मुकेश और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।
1: और गांव नाई वाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा। और ये जो रागनी है ये राजा उत्तानपाद के किस्से से है, जब रानी सुरुचि और सुनीति दो बहनें थी, सुनीति बड़ी रानी थी। उनके बाद जब सुरुचि से शादी हो गई तो जब वो घर पे शादी होके आती हैं तो कहती हैं कि सुनीति को घर से बाहर निकालो। तो आपस में जो समझाते हुए राजा उत्तानपाद सुरुचि को कहते हैं तो उन दोनों का क्या संवाद होता है, आइए सुनते हैं धर्म सिंह और सरोज कपूर की

साधु से कमलेश साहू, जितेंद्र साहू, पायल साहू, बिरखेड़ा जिला हमीरपुर यूपी से मनी राम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल, हिमांशु पाल और इनका परिवार, MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू, एस के पप्पी खुराना, पुरखोलूस आदा कबूल करें, लिख रहे हैं कौन है ये दादा, बाबू रोड गिरढ़ी, झारखंड से मोहम्मद यासिन, अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज और इनका परिवार, ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईम अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाह नवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी।

0: देवी गोस्वामी और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने ग्राम पाजौनिया जिला जालान उत्तर प्रदेश से भी हमें SMS भेजा है। सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने खैल बाजार पानीपत से ये SMS भेजा है। नरेश मल्होत्रा नीटू और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।
1: तो सुनते हैं श्री श्याम को।

0: सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का

ने कहा कि बस्तर पांडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बतूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बतूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। फिदाइन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकवादियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने आज राष्ट्रमंडल खेलों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।

0: तकनीकें हैं या पोर्टल सरकार ने बनाए हैं उनका फ़ायदा उठा के हमें कृषि में अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए, ताकि जो हम कृषि का उत्पादन कर रहे हैं उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके।
1: बिल्कुल
0: और जो नई नई टेक्निक हैं आजकल, वो टेक्निक आ गई हैं जिनके माध्यम से आप न केवल अपने श्रम को बचा सकते हैं, पैसे भी बचा सकते हैं।
1: बिल्कुल, नई
0: और
1: तकनीकी हैं, नई जानकारियां हैं, और कृषि के क्षेत्र में तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रोज़ कोई ना कोई नई जो अनुसंधान है वो होते रहते हैं निरंकार भाई। और जैसा कि आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे सभी किसान भाई बहनों को दी बेल वाली सब्जियों के और एम पोर्टल के बारे में, किसान कॉल सेंटर के बारे में, तो ऐसी ही जानकारियां हम अपने किसान बहन भाइयों के हित के लिए लेकर आते रहते हैं। और आज एक ऐसी ही बातचीत हम सुनवाएंगे जिसमें कि
0: सुनवाएंगे। और हम ये भी बता दें पायल महन कि अभी हमारे कुछ कार्यक्रम भी नए शुरू हुए हैं कृषि से जुड़े हुए, तो
1: बिल्कुल
0: उनकी जानकारी भी हमारे किसानों को होनी चाहिए।

0: समय सुनते थे कि हेलीकॉप्टर से छिड़काव होता है, ये होता है, वो होता है, तो आज हमारे भारत में जो सपना साकार हुआ है, इसका हमारे किसान भाई फायदा कैसे उठा सकते हैं?
1: 2021 का जो समय आया
0: जी
1: सर, वहां से जितने भी फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स हैं वो नैनो में लिक्विड के फॉर्म में क्रिएट होने लगे। तो जो भी लिक्विड फर्टिलाइजर है या पेस्टिसाइड्स है, इसका सबसे बड़ी जो तकलीफ है वो छिड़कने की है।
0: जी
1: क्योंकि एक एकड़ में जो कंपनी है वो कहती है 150 से 200 लीटर पानी लगता है। अब 150 से 200 लीटर पानी छिड़कने के लिए

0: जहां पर कोई भी युवा जो 10वीं पास है वो
1: जी
0: ड्रोन हमसे ले सकता है। कृषि विमान के अंदर हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देने के बाद में उनको हम ड्रोन देते हैं और ड्रोन लेने के लिए पैसा देते हैं, जो कि बहुत ही न्यूनतम ब्याज के ऊपर 6% ब्याज पे उसको पैसा मिलता है।
1: अच्छा,
0: और वो अपने गांव में जाकर हम उसको काम भी देते हैं, तो वो कृषि विमान ड्रोन ले लेकर अपने गांव में जाए, हम उसको 8 लाख से 12 लाख का काम देते हैं ताकि वो अपने गांव में रहकर अपना जीवन सुखी से व्यापन कर सके।
1: यानी कि एक तरह

0: कहते हैं फोटोसिंथेसिस करके स्टोमेटा में जमा हो जाएगी, और जैसे जैसे पौधे को लगेगी वैसे वैसे जो है उसको खाद मिलेगा और पौधे का हेल्थ बेटर होगा, हेल्थ बेटर होगा तो उसका प्रोडक्शन बेटर होगा।
1: डॉक्टर गोविंदा जी, आपने जिक्र किया था युवाओं को प्रशिक्षण देते हैं, तो कुछ युवा जो हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो ट्रेनिंग में कोई पैसा देना पड़ता है या कितने दिन की ट्रेनिंग है, विस्तार से थोड़ा बताएं।
0: जब आप ड्रोन लेते हैं तो ड्रोन की कॉस्ट में ही आपका ट्रेनिंग का पैसा है।
1: अच्छा,
0: तो आपको ट्रेनिंग के लिए अलग से पैसा नहीं देना है।

0: तो ड्रोन तो एकदम जोर से चलता है, तो उनके लिए किस तरह प्रयोग में आ सकता है?
1: इसकी यही विशेषता है सर कि वो क्या करेगा, चाहे आपका खेत 1 बीघे का हो चाहे 5 एकड़ का हो, वो क्या करेगा, जब आपके पास मोबाइल आता है तो आप देखकर बताते हैं कि भाई ये मेरा क्षेत्र है, यदि 1 बीघे में रहा तो 1 बीघे में छिड़काव करेगा, 2 एकड़ में रहा तो 2 एकड़ में छिड़काव करेगा। तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक होने की वजह से कई लोग शुरू में कहते हैं साहब मेरा खेत छोड़ के मेड़ है, उसके बाद में बाजू वाले के खेत में दवाई चले जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इस भ्रांति पे मत जाइए, जो आपका खेत है उसी खेत में छिड़काव करेगा और आपकी एक बूंद दवाई भी दूसरे के खेत में नहीं जा सकती है, आपकी दवाई आपके ही खेत में छिड़की जाएगी, चाहे वो 1 बीघे का हो चाहे 10 एकड़ का हो।
0: डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों के मन में ये भी जिज्ञासा हो रही है कि भाई जब हम दवा का इस्तेमाल करेंगे खेत पर जाकर, तो क्या हाथों से ही दवा उतना ही डालना पड़ेगा जितनी जरूरत है, या इसका भी कोई ऑटोमेटिक सिस्टम है?
1: इसका जो टैंक होता है वो 10 से 12 लीटर का होता है,
0: जी
1: तो 10 लीटर का टैंक हुआ तो उसमें 10 लीटर पानी डालते हैं और जितनी दवाई है वो उसमें डाल देते हैं। तो आप अच्छे उपयोग के लिए क्या करना चाहिए कि बाहर बाल्टी में एक 10 लीटर

0: पहुंचिए और वो प्रिस्क्राइब फॉर्मूला है उसके हिसाब से दवाई अच्छे से मिलाकर घोलकर आप उसके टैंक में डाल दीजिए। कई खेतों में ऐसा भी होता है कि एक के साथ दो तरह की दवाई मिलाई जाती है, तो जो भी दवाई आपको मिश्रण करना है आप बाहर करिए, उसको अच्छे से मिक्स करिए, टैंक में डालिए और टैंक उसको अपने आप छिड़काव करेगा।
1: आखिर में डॉक्टर गोविंदा जी, हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि नई तकनीक अपना के किस तरह हम उत्पादन बढ़ाएं और किस तरह पैसे को बचाएं?
0: जब भी नई तकनीक आती है दुनिया के किसी मुल्क

0: में जाइए, शुरुआत में मुश्किल लगती है, जैसे मोबाइल था, कितना मुश्किल लगता था। आज एक साल का बच्चा भी जो है घर में पैदा होते ही मोबाइल चलाने लग जाता है। सेम चीज टेक्नोलॉजी के साथ है। मुझे लगता है जो आज की लीडरशिप है, जो ड्रोन को लेकर आई, इससे बड़ा विजन नहीं हो सकता। आने वाले समय में भारत में 6,38,000 गांव है, हर गांव में 10 ड्रोन चाहिए कम से कम, ताकि एरिया पूरा तरीके से कवर हो। एक और बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज करने से आपका खर्चा घटेगा ना कि आपका खर्चा बढ़ेगा। तो आपका पैसा भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन भी ज्यादा आएगा, समय भी कम लगेगा। तो सब लोगों को टेक्नोलॉजी का जरूर से इस्तेमाल करना चाहिए। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम कृषि विमान ड्रोन बनाते हैं
1: जी,
0: और वागो ग्रीन के माध्यम से काम करते हैं, तो मैं सभी को कहना चाहता हूँ, आपको जो भी ड्रोन के बारे में भ्रांति है या आपको जानकारी लेनी है, तो आप हमारे कृषिविमान.com के जा सकते हैं। सारे YouTube पे हमने वीडियोस लगा रखे हैं। उसके अलावा हम भारत के अलग अलग क्षेत्र में ट्रेनिंग देते हैं और आप हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। हम हर सप्ताह एक क्लास लेते हैं जहां के ऊपर अलग अलग राज्य के लोग जुड़ते हैं और हम उनको ड्रोन के बारे में जानकारी देते हैं।

0: और आप हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। हम हर सप्ताह एक क्लास लेते हैं जहां के ऊपर अलग अलग राज्य के लोग जुड़ते हैं और हम उनको ड्रोन के बारे में जानकारी देते हैं।
1: डॉक्टर गोविंदा जी, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी और हमारे किसान भाई भी भाई खेती में उत्पादन बढ़ाएंगे और भाई जिसने मोबाइल चलाना सीख लिया वो तो पायलट बन ही जाएगा, इसमें कोई दो नहीं। डॉक्टर गोविंदा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो पायल बहन, ये बातचीत भाई सुन रहे थे कृषि में नई तकनीक और ड्रोन का उपयोग, और इसमें डॉक्टर शंकर गोयनका से बातचीत कर रहे थे पीएस भाटी। और अब भाइयों को क्या सुनवा रहे हो?
3: बिल्कुल, करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं पाल मिठारिया की आवाज़ में।
1: भाइयों, कृषि के उत्पादन बढ़ाने

दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब से कुछ ही पलों में आनंद लेते हैं गीत और गजल के हमारे कार्यक्रम का। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवाते हैं चंद खूबसूरत सी गजलें।

0: श्रोताओं, गीत गजल के कार्यक्रम में अभी आपने आनंद लिया चंद खूबसूरत सी गजलों का। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी।

0: अधिकतम 1,000 लोगों को अनुमति दी जा सकती है। यह अनुमति संबंधित आयोजकों या व्यक्तियों द्वारा औपचारिक आवेदन करने पर समक्ष प्राधिकारी द्वारा दी जाती है, जो निर्धारित नियमों और शर्तों के पालन के अधीन होती है। दिल्ली पुलिस ने नागरिकों को बिना पुष्टि की गई जानकारी पर विश्वास न करने या उसे न फैलाने और सही जानकारी के लिए मात्र आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने की अपील की है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में कथित पेपर

कल्पूर्वी विनोद नगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी और कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिलें वितरित करेंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री प्रथम चरण में 3,000 छात्राओं को विद्या वाहिनी साइकिलें प्रदान करेंगी। इसके बाद अगले एक महीने के भीतर दिल्ली की कुल 1,40,000 छात्राओं को चरणबद्ध तरीके से साइकिल वितरित की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं के लिए विद्यालय तक पहुँच को अधिक सुगम बनाना, उनकी नियमित

स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए रोहिणी जिला पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से जिले भर में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। रोहिणी के पुलिस उपायुक्त ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की गहन जांच की गई तथा मोटर वाहनों के शीशों पर लगी अवैध ब्लैक फिल्म हटाने की कार्रवाई हुई। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में एक अफ्रीकी नागरिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 34 ग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने शराब तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से हरियाणा से दिल्ली लाई जा रही 400 क्वार्टर शराब और तस्करी में इस्तेमाल होने वाला वाहन बरामद किया है। मामले की जांच जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।

0: निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, गीत मालिका कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और आइए एक और खूबसूरत सी आवाज के साथ इस कार्यक्रम को जारी रखते हैं और आवाज है मोहम्मद अजीज साहब की। आइए सुनते हैं ये एक और खूबसूरत सी पेशकश।
2: दोस्तों, आज इस महफिल में कई मस्ताने हैं, एक शम्मा दो परवाने, एक हसीना और दो दीवाने हैं, लेकिन एक है हीरो और एक है जीरो। अब आप ही बताइए कौन है हीरो और कौन

0: सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज, पश्चिम एशिया संघर्ष की तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है।

मंजूरी दी। राज्यसभा ने यह विधेयक कल पारित किया था। इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद निचले सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में अभी लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है, जिसे लोकसभा ने कल मंजूरी दी थी। नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही एक बार स्थगित करनी पड़ी। इस व्यवधान के कारण निचले सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चले।

देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के पास एक असाधारण पर्यटन गाथा है जिसे सरकार और इंडिगो मिलकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के लिए आज हुए उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ।

0: कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना है। इसी तरह का मौसम पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में अगले 2 से 3 दिन तक रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से भेंट की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 274 अंक बढ़कर 77,928 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 67 अंक बढ़कर 24,317 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 95.68 रुपए पर बंद हुआ।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि 1 जुलाई तक देश में 33 करोड़ 13 लाख घरेलू एलपीजी उपभोक्ता थे। इनमें से 10 करोड़ 58 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन शामिल हैं। श्री गोपी ने कहा कि सरकार घरों में किफायती कीमतों पर घरेलू एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित

अलर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल अब भी तश्वीशनाक है। दौलत मुश्तरका खेलों में जेवलिन थ्रो करने वाले नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह मर्दों के फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट ने कौमी ताज़ीम की तौहीन की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने आज इस बिल को मंजूरी दी।

की बुनियाद पर समाअत की जा सके। इसमें मजीद कहा गया है कि खिलाफ वर्जियों की तहकीकात पुलिस थाने में इत्तला रिकॉर्ड किए जाने की तारीख के 2 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल हो जानी चाहिए। फर्द जुर्म दाखिल किए जाने के बाद मुकदमात की कार्रवाई 3 महीने के अंदर मुकम्मल करनी ज़रूरी होगी। ऐवान में बिल पेश करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये बिल मुल्क के तलबा और नौजवानों की फलाह व बहबूद को तहफ़ फराहम करने के हुकूमत के आला तरीन अज़्म की तौसीक़ है। डॉक्टर

सामना करना पड़ेगा। महकमा दाखला ने कहा कि अगर इन मामलों में कोई गिरफ्तारी या हिरासत में लेने की कार्रवाई की गई है तो गिरफ्तारियों पर नज़रसानी करने और गिरफ्तार शुदा अफराद को रिहा करने के लिए कार्रवाई फौरी तौर पर की जाएगी। महकमे ने कहा कि दिल्ली सरकार एहतजाज में शामिल अफराद के खिलाफ किसी तरह की मजीद मनफी कार्रवाई करने की तजवीज़ नहीं देती और ये मामला इस सिलसिले में मजीद कोई कार्रवाई किए बगैर ख़त्म समझा जाना चाहिए। इसने मजीद कहा कि गुज़िश्ता रोज़ शाम 6 बजे

करेगा और टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग और इख्तरा के लिए भारत को एक आलमी हब के तौर पर कायम करेगा। इस मौके पर खिताब करते हुए मवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस समझौते पर दस्तखत करना वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में एक नए बाब का आगाज़ है। तकरीब से खिताब करते हुए मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने कहा कि ये इकदाम रियासत को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन पैदावार और आलमी बरामदात के लिए एक कलीदी मरकज़ में तब्दील करने की जानिब एक बड़ी पेशरफ्त है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के तीन असेंबली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए आज पोलिंग पुरअमन तौर पर मुकम्मल हो गई। बिहार में बांकीपुर हलके, गुजरात में मंजालपुर और मध्य प्रदेश में दतिया हलके में वोट डाले गए।

में 71% से ज़्यादा राय दहिंदगान ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने आज एक दूसरे पर ताज़ा मिज़ाइल के हमले किए, जिसके बाइस बड़े पैमाने पर इलाकाई जंग के अंदेशे उभर कर आए हैं। नीज किसी फौरी हल के लिए इम्कानात मादूम हो गए हैं। हलाकतों में कलील वक्फे के बाद इन ताज़ा हमलों ने इस तशवीश में इजाफा कर दिया है कि ये जंग मजीद मुल्कों में

किसी फौरी हल के लिए इम्कानात मादूम हो गए हैं। हलाकतों में कलील वक्फे के बाद इन ताज़ा हमलों ने इस तशवीश में इजाफा कर दिया है कि यह जंग मजीद मुल्कों में भी फैल सकती है। उर्दुन ने कहा है कि उसने मुसलसल दूसरे रोज़ 5 ईरानी मिज़ाइलों को नाकारा बना दिया है। कुवैत ने खबर दी है कि मुल्क के जुनूब में एक चीनी कंपनी से ताल्लुक़ रखने वाली एक इमारत ईरानी हमले से मुतासर हुई, जिसमें एक शख्स हलाक जबकि बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। जंग का यह हालिया फैलाव ईरान पर वसी पैमाने पर अमरीकी हमलों के बाद हुआ है, जो उसने उर्दुन में एक फौजी ठिकाने पर ईरान के मिज़ाइल के हमले के जवाब में किया था। दोनों जानिब से मिज़ाइल के ये हमले सऊदी अरब के साथ तालमेल से अमरीका के ज़रिए इराक़ में ईरान की मुआविनत वाले मिलिशिया पर किए गए हमलों के बाद हुए हैं। खबर है कि हमलों में कम से कम 20 फाइटर्स और 6 ईरानी फौजी मुशीर हलाक हुए थे। पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर POJK में पुरअमन मुजाहिरीन पर पाकिस्तानी मुसल्ला फौज की जानिब से वहशियाना हमले के बाद एहतजाज का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी मुसल्ला फौज की फायरिंग में पीर के रोज़ 40 से ज़्यादा सिविल

की है। उड़ीसा में हाई अलर्ट जारी है क्योंकि सैलाब के पानी के बाईस महानदी दरियाई निज़ाम में तुगयानी आ रही है। इसी के साथ इम्कान है कि बहुत बड़ी मकदार में सैलाब का पानी आज शाम तक मुंडाली पहुँच जाएगा। ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में नीरज चोपड़ा मर्दों के जेवलिन थ्रो मुकाबले के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह भी इस मुकाबले के फाइनल में पहुंचे हैं। क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज पांचवें मकाम, रोहित यादव नवे और यशवीर सिंह दसवें मकाम पर रहे।

0: रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: राकेश भटनागर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: राकेश जी, भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार बन चुका है और ये डिजिटल अर्थव्यवस्था की एक तरह से मेरुदंड भी माना जाता है। तो ऐसे में अगर हम पिछले 10-11 वर्षों को देखें तो भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं? क्या ये केवल मोबाइल और इंटरनेट का ही विस्तार है या इससे कहीं अधिक सूचना प्रौद्योगिकी में बदलाव आया है?
2: जो एक सेगमेंट जिसमें कि बहुत ज्यादा चेंज हुआ वो

100 एकड़ लैंड का प्रोविजन किया गया है। ये फेज वन में है, इसके आने वाले फेज में और भी बढ़ने की क्षमता है। ग्वालियर सिटी में जो 70 एकड़ एरिया है उसमें जो है वहां पर शेड्स वगैरह भी लगाए जाएंगे। जो लागत होगी वो कंपनीज को उसको प्रोक्योर करने की लागत भी बहुत नॉमिनल होगी। उनके पास वहां पर टेलीकॉम टेस्टिंग इकोसिस्टम भी वहां पे लगाया जाएगा, टेलीकॉम सेंटर्स भी लगाए जाएंगे, और उसके साथ साथ में जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है

0: में काफी क्लोजली कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क कर रही है, और ऐसा कोई कारण नहीं है कि इंडिया जो है 6G में एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे उभर के आए। पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी, 4G तक की जो टेक्नोलॉजी थी, इंडिया ग्लोबल लीडर नहीं बन पाया था, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया में 5G में भी करीब हमारे पास 10-12 प्लेयर सक्षम हैं जो कि ग्लोबल 5 प्लेयर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
1: जी राकेश जी, अभी आपने वैश्विक नेतृत्व की बात कही, ग्लोबल लेवल पर जो भी हम कर सकते हैं उसकी बात की। थोड़ा सा अपने देश में वापस आते हैं, गांवों की हम बात करते हैं, तो भारत नेट जैसी जो परियोजनाएं हैं उनका उद्देश्य गांव गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है, और इस योजना ने काफी हद तक सफलता प्राप्त कर ली है। अभी जो वर्तमान

0: जितने उससे इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करी, 15 अगस्त को ही विल बी रेडी विद अ सॉल्यूशन जिसमें कि आपको ऑर्डिनरी फोन पे भी और वो भी घर के अंदर बैठे हुए भी आप सेटेलाइट का सिग्नल रिसीव कर सकते हैं। तो इस तरह का प्रयास दुनिया में किसी और देश में अभी आज तक नहीं हुआ है,
1: जी
0: ये इंडिया में होने जा रहा है।
1: जी राकेश जी, अंत में आपसे बस एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि आज हम AI, ओपन RAN और इंटरनेट थिंग्स या फिर क्लाउड जैसी तकनीकों की चर्चा कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल अब बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो टेलीकॉम सेक्टर से इनसे क्या उम्मीदें हैं और आने वाले वर्षों में भारत को इनसे किस तरह से लाभ होगा और भारत कैसे वैश्विक स्तर पर अपने आप को इसमें श्रेष्ठ साबित कर सकता है?
0: आपने क्लाउड की आपने मेंशन करी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

ये आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी, प्लीज।

0: आदि पर्टिकुलर यस
1: थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान डॉक्टर अशोक कुमार मिट्टल जी।
2: एनवायरमेंट तथा बायोडायवर्सिटी के मैनेजमेंट में महिलाओं की भागीदारी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप स्थानीय स्तर पर वन उत्पादों के कलेक्शन और प्रोटेक्शन में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि बायोडायवर्सिटी से जुड़े फाइनेंशियल ग्रांट

0: संबंधी सुरक्षा पर इसके प्रभाव की स्वतंत्र समीक्षा करवाने का विचार रखती है।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री थ्रू पी विल्सन जी। थ्रू दिस हाउस आई वुड लाइक टू आस्क द हॉनरेबल मिनिस्टर द रीजंस फॉर द गवर्नमेंट डिसीजन टू अब्स्टेन फ्रॉम द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन ऑन द डीसेंट वर्क इन द प्लेटफॉर्म इकोनॉमी व्हिच सीक्स टू सेट मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर द गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड वॉज सपोर्टेड बाय द बोथ इंडियन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स especially when such absentation risk denying lakhs of young Indians engaged in app-based work basic protections on working conditions, social security and fair treatment that the global community has recognized as essential. Thank you, Chairman.
2: Honorable Minister.
0: Dr. Mansukh Mandviya, श्रम एवं रोजगार मंत्री।
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आईएलओ के गिग वर्कर्स के विषय के संदर्भ में जब क्वेश्चन पूछा है, मैं बताना चाहूंगा कि गिग वर्कर्स हमारे देश में एक नई व्यवस्था खड़ी हो रही है और गिग वर्कर्स का हितों की रक्षा हो, गिग वर्कर्स को अपना एक एम्प्लॉइज के रूप में अधिकार मिले, उसके लिए पहली बार लेबर कोड में, नहीं केवल भारत में लेकिन दुनिया में पहली बार हमने गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज करा है और उसको कानूनी दर्जा दिया। कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश है वो भारत है।

और लेबर कोड तो 2019 और 20 में बना था, लेकिन कई कारणों से वो लागू नहीं हो पाया था। लेकिन हमने 2025 नवंबर में देश में लेबर कोड लागू करा और मई 2026 में हमने उसका रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन करा। सभी स्टेट अपने रूल्स को उसके साथ अलाइन कर रहे हैं और स्टेट स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमने एक प्राइमरी सर्वे करा था और हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने VVGNLI करके हमारी एक लेबर इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक व्यापक सर्वे करा। उस सर्वे में वर्कर्स की ओर से जो फीडबैक आया, ये मैं आपके द्वारा सदन को देश को बताना चाहूंगा, 60% वर्कर्स का मानना है कि लेबर कोड के पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन से वर्किंग कंडीशन बेहतर बनेगी। 63% वर्कर्स का विश्वास है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स अधिक पोर्टेबल बनेंगे। 60% कॉन्ट्रैक्ट माइग्रेंट और गिग वर्कर्स का मानना है, गिग वर्कर्स

चल रही है और इंडस्ट्रीज क्लस्टर के आधार पर जिस टाइप का इंडस्ट्रीज क्लस्टर है, एक क्लस्टर के अनुरूप उसको स्किलिंग हो, इसलिए हब एंड स्पोक के द्वारा आईटीआई की व्यवस्था करी गई है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक लेवल की इंडस्ट्रीज है तो डिस्ट्रिक्ट के हब के रूप में एक आईटीआई काम करेगी और स्पोक के रूप में ये इंडस्ट्रीज के क्लस्टर में उसको ट्रेनिंग दी जाएगी।

माननीय चेयरमैन महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में ये विषय लाना चाहता हूँ कि जो रेट्स ऑफ वेजेज है इंक्लूडिंग वीडीए पर डे, वो एग्रीकल्चर के केस में बहुत कम है, जबकि हम सब जानते हैं कि जीवन व्यतीत करने के लिए एग्रीकल्चर का एक विशेष महत्व होता है। और जब मैं इसको कंपैरिजन करता हूँ स्वीपिंग से, वॉच एंड वार्ड, लोडिंग अनलोडिंग, इन सब के संदर्भ में ये जो वेजेस हैं बहुत कम है, तो क्या सरकार इस

पार्ट है। और जब वेजेस तय करी जाती है तब व्यक्ति को कितना न्यूट्रिएंट फूड चाहिए, कितनी कैलोरी चाहिए, उसको विज्ञापन के उसको जीवन निर्वाह के लिए कपड़ा चाहिए, उसको घर चाहिए, उसको फैन घर में फैन चाहिए। तो पहले फैन नहीं था तो बिजली बिल नहीं आता था। आज अभी मोबाइल तो हम काउंट ना करें, वो एडिशनल व्यवस्था है, लेकिन उसके जीवन में मिनिमम जीवन जरूरी चीजों को खरीदने के लिए उसको मिनिमम जो खर्च लगता है उसको मिनिमम वेज के रूप में माना जाता है। और मिनिमम वेज आज तक माननीय अध्यक्ष महोदय सरकार तय करती थी, लेकिन भारत सरकार तय करती थी, लेकिन वो एडवाइजरी के रूप में था, स्टेट उसको माने नहीं माने उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं था। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लेबर कोड लागू करा, लेबर कोड में एक फ्लोर वेज की का प्रावधान करा गया है। तो भारत सरकार अभी नए लेबर कोड के मुताबिक फ्लोर वेज तय करेगी। फ्लोर वेज मतलब कोई भी राज्य उससे कम मिनिमम वेज नहीं देंगे।

इतना तो इतना देना ही देना, उससे ऊपर राज्य जितना रख रख रख सकते हैं, इतना रख जितना रखना चाहे इतना रख सकते हैं। उसमें से सभी राज्य अपने, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देश में बहुत डाइवर्सिटी है, हमारे देश में मैदानी प्रदेश भी है, हिमालयन रेंज भी है, नॉर्थ ईस्ट जैसे पहाड़ी प्रदेश भी है, विकसित प्रदेश भी है, अल्पविकसित प्रदेश भी है। तो ऐसी स्थिति में उसकी रिक्वायरमेंट और उसका जीवन निर्वाह का ABC यानी कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का खर्च, एक छोटे शहर में रहने वाले और उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का जीवन खर्च, और एक का दूर सुदूर गाँव में रहने वाले और किसान का जीवन निर्वाह का खर्च अलग अलग होता है, उसको ध्यान में रख के फ्लोर वेज तय करा जाएगा। और फ्लोर वेज के ऊपर सब लोग वेज तय करे, उसमें सारा पैरामीटर को सुनिश्चित करके तय करा जाएगा। वर्तमान समय में जो वेजेस उपलब्ध है वो हर साल में 2 बार वेरिएबल डियरनेस अलाउंस होता है, उसके अनुसार

ऑनरेबल चेयरमैन सर, जय श्री जगन्नाथ सर। माननीय मंत्री अभी बोल रहे थे कि इन्फ्लेशन के बारे में, किस तरह से हर चीज में प्राइस राइज हो रहे हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली भी अपनी घर चलाने के लिए मुश्किल हो रहा है, तो हम लोग जो एकदम लोअर क्लास बिलोंग्स करते हैं, जो अनस्किल्ड लेबर और स्किल्ड लेबर है, उन लोगों के लिए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से प्राइस हाइक हो रहा है, उस माननीय मंत्री जी ये बोलेंगे कि उन लोगों की जो वेजेस है, डेली वेजेस है, वो बढ़ना जरूरी है, वो बढ़ाने की कोई

0: सब्जेक्ट है, अगर हेल्थ अगर किसी का खराब होता है तो अगर वहाँ पर कोई असिस्टेंट ना हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाते हैं। उन लोगों के लिए कुछ सोचे हैं क्या, और ये वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, और बढ़ाने की अगर कोई योजना है तो सर बताए। थैंक यू सो मच सर।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
2: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात में ऐसा इस दृष्टि से ऐसा समझा हो कि उनके यहाँ हेल्थ वर्कर है, उसकी सैलरी बढ़नी चाहिए, और उसने ये भी अपेक्षा रखी है कि जो अपने मिनिमम वेज है वो आपको रेगुलर बढ़ाता जाना चाहिए, समय समय पर बढ़ाते जाना चाहिए। मैं उसको माननीय सदस्य को रिप्लाई देना चाहूंगा आपके द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा देश अभी बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, नया भारत बन रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारा भारत दुनिया में

0: प्रशिक्षित करने का क्या क्या माध्यम है और इसमें महिलाओं युवाओं की संख्या कितनी है?
1: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगी कि पैरा फ्रेंडली फैसिलिटी सेंटर्स हमारे पूरे टोटल साई में 13 सेंटर है, जिसमें से गांधीनगर का जो सेंटर है वो डेडिकेटेड सेंटर है फॉर पैरा, और उसके अलावा 12 सेंटर है हमारा त्रिवेंद्रम में है, अर्नाकुलम में है, संभाजीनगर, बैंगलोर, भोपाल, कलकत्ता, लखनऊ, पटियाला, सोनीपत, आईजी स्टेडियम और केएसएसआर में, इन सभी जगह पे हमारे पैरा एथलीट्स को ट्रेनिंग दी जाती है और लगभग 172 एथलीट्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जिसमें से 62 जो हमारे एथलीट्स है वो

मंच पर आ रही है, यूनिवर्सिटी मंच एक मंच पर आ रही है और माय भारत के युवा उसको लीड कर रहे हैं। युवाओं ने अपने स्वयं को चिंता करी कि हम हमारे साथी को एडिक्शन से बचाए, नशा से बचाए, इसलिए 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी 10:30 बजे समग्र देश को संबोधित करेंगे और 1 करोड़ से अधिक युवा एक साथ में शपथ ग्रहण करेंगे कि हम तो नशा से मुक्त होंगे, लेकिन हम हर व्यक्ति एक एक व्यक्ति को नशा मुक्त करेंगे।

0: कि क्योंकि शराबबंदी कानून लागू है इसलिए ड्रग लेने की प्रवृत्ति नशा के रूप में वहाँ के युवाओं में ज्यादा बढ़ी है। तो क्या शराब कानून लागू होने से भी कोई इसका संबंध है? इस दृष्टि से भी कोई स्टडी कराना चाहेंगे?
1: मिनिस्टर,
2: माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सार्वजनिक स्वीकार करने योग्य है कि नशा तो युवाओं में बढ़ रहा है और उसका समाधान करने के लिए हमें सामूहिक अभियान चलाना है, जिस उल्लेख में लास्ट

0: जो कठिन परिस्थितियों में भी राष्ट्र के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान देती है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूंगी कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले महिला श्रमिकों का शोषण न हो, उन्हें सुनिश्चित वेतन मिले, काम की जगह पर उन्हें सुरक्षा मिले, उनकी मैटरनल और मेंस्ट्रुअल हेल्थ की केयर हो, उनका ख्याल रखा जाए और महिला कामगारों के बच्चों के लिए पालना योजना अनिवार्य की जाए और सरकार के सभी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़ी महिला श्रमिकों को तक पहुंचाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
2: शोभा कारंदलाजे, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री।
3: माननीय चेयरमैन सर, पहली बार देश में 29 एक्ट को हम बदल के 4 कोड में लाए हैं, महिला का सुरक्षा इसी में है। ये 4 कोड में महिला के लिए हम एम्प्लॉयर्स कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते है सर। महिला एंड पुरुष को एक साथ लेके जाना एंड एक ही पगार देना, जेंडर डिस्क्रिमिनेट को इसी में हम नकारा है। ऐसे ही महिला

का भी तैयार किया, इसके कारण ईपीएफओ में 2007 to 2025 में ये केवल 8 साल का अंदर 8.23 करोड़ लोग सब्सक्राइब नया सब्सक्राइबर ईपीएफओ में बढ़ा है, नया सब्सक्राइबर। पिछले साल लास्ट ईयर में वो नंबर था 1.6 रहे, लाइक इतना बड़ा रेट में हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। इसके कारण है अलग अलग सर, हमें एमएसएमई को मदद दे रहे हैं। अभी एमएसएमई में उद्यम पोर्टल खोला हम, 9 करोड़ उद्यम पोर्टल में एंटरप्राइज जुड़े हैं। वो लोग बताया हम 39 करोड़ लोगों के लिए काम दिया है, एम्प्लॉयमेंट दिया है। इसी में 40% महिला है सर, हमको बोलने के लिए खुशी होता है 40% इसी में महिला है। अभी एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा हो रहे हैं, महिला का ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे ही स्टार्टअप्स केवल हम गिनती करते थे।

सोशल सिक्योरिटी कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड में महिलाओं के लिए हम, मैं पहले क्वेश्चन का आंसर में भी बताया सर, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते नया कोड में, एंड एक काम के लिए इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेजेस, एंड इक्वल वेजेस देना इक्वल वर्क के लिए, ऐसा हम किया है सर। ऐसे कोई भी बोर्ड हो, सरकार कुछ भी बोर्ड गठित करे और यानी इंडस्ट्री कुछ भी बोर्ड गठित करे, इसी में 1/3 उसी में बोर्ड में मेंबर्स महिला होना चाहिए, महिला का समस्या महिला ही जानती है, इसलिए महिला होना चाहिए, ऐसे ही प्रोविजन इसी में रखा है सर। मैटरनिटी लीव 26 वीक तक हम बढ़ाए सर, वर्क फ्रॉम होम का प्रोविजन हम रखे है सर, ऐसे ही महिला

0: देने के लिए इसी में सब प्रोविजन है, मैंने पिछले आंसर में इसका सदन के नजर में लाया सर। थैंक यू।
1: थैंक यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 126 श्रीमान उज्जवल देवराव निकाम जी।
2: क्वेश्चन नंबर 126 सर।
3: प्रश्न संख्या 126, क्या विधि और न्याय मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क गत 3 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सहायता तथा विधिक परामर्श

सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो जो रीजनल लैंग्वेजेज हैं, अभी भाषिणी टूल हमारे बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। जितने भी हमारी भाषाएं हैं, जैसे 22 भाषाएं संविधान में मान्यता प्राप्त है, तो संविधान भी हमने सभी भाषाओं में अनुवाद किया है, और रीजनल जो भाषाएं हैं उनका भी भाषिणी टूल के माध्यम से आप भाषाओं का अनुवाद जान सकते हैं। लोकसभा में भी राज्यसभा में भी आपने देखा होगा कि अनुवाद जो है ज्यादा भाषाओं में हो रहा है। ये जो विषय आपने रखा है ये विषय जस्टिस से संबंधित ही है कि जो भाषा नहीं जानता है, जैसे अंग्रेजी में अधिकतर हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में लोग बहस करते हैं, जो भाषा नहीं जानते हैं उनके लिए क्या भाषिणी टूल उसका एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, और इस दिशा में नरेंद्र मोदी जी

सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि देश में एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई है और मेडिकल सीटों में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। इससे पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही मामलों की जांच 2 महीने और मुकदमे का निपटारा 3 महीने के भीतर करना होगा। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। भाजपा के ब्रजलाल ने कहा कि इस विधेयक में फास्ट ट्रैक अदालतों और विशेष कार्यबल का प्रावधान है। डीएमके के तिरुचि शिवा और समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत।

स्थिर रखना। 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे बुधवार को पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा

आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बना ली है। प्रवीण चित्रावेल और सिल्वा प्रभु ने पुरुष त्रिकूद स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है निशिगंधा और मैं हूँ आपके साथ सुरभि। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। जी हाँ, मोहब्बत। मोहब्बत की सबसे प्यारी बात यही होती है कि इसमें हर जवाब सीधा नहीं होता। कभी मुस्कान पहेली बन जाती है तो कभी निगाहें सवाल पूछती हैं, और कभी खामोशी ही सबसे खूबसूरत जवाब बन जाता है। चांदनी रात में जब दो दिल एक दूसरे को समझने लगते हैं, या फिर एक दूसरे को याद

आपकी भी पलकों पर ठहरा हुआ है। तो ये सदाबहार गीत नगमा उसी एहसास के नाम। आइए सुनते हैं, फिल्म है पारसमणि, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब की।

निशिगंधा आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz। तुझसे बिछड़ के हम भी मुकद्दर के हो गए, तुझसे बिछड़ के हम भी मुकद्दर के हो गए, फिर जो भी दर मिला उसी दर के हो गए। फिर यूं हुआ कि गैर को दिल से लगा लिया, फिर यूं हुआ कि गैर को दिल से लगा लिया, अंदर वो नफरतें थी कि बाहर के हो गए। तुझसे बिछड़ के हम भी मुकद्दर के हो गए, फिर जो भी दर मिला उसी दर के हो गए।

जवाब देते हुए कहा कि यह देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़

0: मेघालय सरकार ने वर्नी हाट में वायु प्रदूषण कम करने के लिए आधुनिक वायु शुद्धिकरण उपकरण लगाने का फैसला किया है। इस बारे में राज्य के मंत्री और जिरांग के विधायक स्वस्थनीज सोहतून ने स्थानीय लोगों के साथ बैठक की। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बना ली है। प्रवीण चित्रावेल और सिल्वा प्रभु ने पुरुष त्रिकूद स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. The bill was passed with the Lok Sabha on Wednesday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. It further provides that the investigations into offences must be completed within 2 months from the date the information is recorded at the police station. The trials must be concluded within 3 months from the filing of the charge sheet. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel and PMO, Dr. Jitendra Singh said this issue touches every citizen of India and has stake with every citizen of this country. Mr. Singh also listed the government's effort to prevent paper

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि उसमें मिलने वाला दर्द भी अपना सा लगने लगता है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें भरने की नहीं बल्कि उम्र भर महसूस करने की चाह होती है। जी हाँ, जब रात में खामोशी आ जाती है और ऐसे में दिल बस उसी एहसास को फिर से जीना चाहता है, उस एहसास को जिसने कभी मुस्कुरा

0: संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है।
1: संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में

रात सुरमई प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैं सुरभि, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। और चलिए रात सुरमई का आगाज़ करते हैं इस गीत के साथ।

रात सुरमई प्रोग्राम में चलिए अब आगे आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी का ये बहुत ही खूबसूरत गीत।

काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कई दशकों से केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के सामने प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या रही है, जिससे लाखों

0: रिकॉर्ड बनाया और क्लीन एंड जर्क में 212 किलोग्राम का वजन उठाया। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. The bill was passed with the Lok Sabha on Wednesday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates

10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार

अभी आपने गीत सुना फिल्म दूरियां से, भुवेंद्र सिंह और अनुराधा पोडवाल की आवाज़ में। संगीतकार जयदेव, गीतकार सुदर्शन फ़ाकिर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अगला गीत सुनते हैं। फिल्म अलग अलग से लता मंगेशकर की आवाज़ में, संगीतकार आर टी बर्मन, गीतकार आनंद बग।

10 मिनट की प्रस्तुति रहेगी फिल्म संगीत आपकी पसंद। फिर 11:10 में कार्यक्रम सबरंग और 11:30 पर हम लाएंगे आपके लिए कार्यक्रम सुरमंजरी, जिसमें हिंदुस्तानी संगीत के सितार का आनंद ले सकते हैं, जिसमें कलाकार होंगे पंडित राजीव वर्मा जी।

संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लिखतु दोरजी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान

में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लोअर बॉडी के हिप्स के नीचे के हिस्से को, वेस्ट से नीचे के हिस्से को सक्रिय रखती है, अकड़न जकड़न से दूर रखती है। अर्थात आप सब समझ गए होंगे हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, तितली अभ्यास की बात कर रहे हैं। तितली आसन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मूवमेंट है। तितली वाला अभ्यास हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए कुर्सी पर तो हम बैठ नहीं सकते, आवश्यक है एक प्लेन स्थान का चुनाव करके सीधे बैठ जाए। अपने दोनों पैरों को आगे फैलाएं, दोनों हथेलियों को जंघा के बराबर में रखें, पैरों को थोड़ा हिला लें, आगे पीछे मूव कर लें, पैरों में थोड़ी शिथिलता दूर हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे। एक दाहिने पैर को बाईं जंघा के ऊपर उठा के रखें और धीरे धीरे घुटने को पकड़ के, एक दाहिने हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ें और बाएं हाथ से पंजे को पकड़ के ऊपर नीचे हिलाएं, ऊपर नीचे

करना, अनुभव करना, श्वास के आने जाने को देखना और अपना पूरा ध्यान उस पर लगा देना। यही है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं। लंबी गहरी श्वास भरते हैं और छोड़ते जाते हैं। अपने ऑफिस में, घर में, कार्यस्थल में, खेल के मैदान में, ग्राउंड में, कहीं भी गहरी सांस के अभ्यास को कर सकेंगे। इवन हम कभी देर तक रेड लाइट पर फंस गए, गाड़ी बंद कर दी, तनाव आ रहा है जाम में फंसे होने का, उस तनाव से मुक्ति के लिए भी हम अपनी लंबी गहरी सांस का अभ्यास कर सकते हैं। कभी सामने वाले से कोई झगड़ा हो गया, अपने गुस्से को कैसे काबू करना है, तो भी हम अपनी लंबी गहरी सांस का अभ्यास करके अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। निरंतर लंबी गहरी सांस।

उनकी सर्वग्राह्य विधि बन जाती है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा के दौरान जब आप श्वास को ले रहे हैं धीरे धीरे पेट फूलेगा, जब श्वास छोड़ते हैं धीरे धीरे पेट नीचे जाएगा, और इसी पेट के ऊपर नीचे होने को यानी के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में